ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5

FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को

मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी।

स्थित सात परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने की आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं मातृ वंदना से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर को। इसी के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आज का विषय है कल करे सो आज कर, आलेख श्री सुशील कश्यप का और वाचन स्वर आभा गुप्ता का।
1: किताबों में लिखी बातें पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं। उन्हीं बातों को जब हम जीवन में क्रियान्वित करते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी चेतना अपने पूरे संस्कारों के साथ अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। काल करे सो आज कर, अगर हम इन 5 शब्दों को भी समझ सकें तो शायद जीवन मृत्यु के रहस्य को भी समझने में कठिनाई न हो। इससे आगे के शब्द भी तभी समझ में आएंगे जब हम उन्हें यथार्थ में उतार लेंगे। प्रलय तो पल पल में हो ही रही है, बल्कि लयबद्ध हो रही है। वक्त गुजरता रहता है। आप सोचें कि ये वक्त अब मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा जो गुजर रहा है। ये कल्पना नहीं, सत्य है। सत्य का दर्शन करना और उसकी कल्पना करना भी ईश्वरीय प्रसाद है। हमें पता है कि कल कभी न आया है न आएगा। कल तो स्वयं काल में निहित है। भूत, वर्तमान और भविष्य, बस इतनी सी ही तो कहानी है। जीवन चला, दौड़ा, थका, हारा और फिर सो गया। फिर कहीं कभी किसी और रूप में बना और फिर चला। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। रुकता नहीं है तो केवल समय, और शायद इसीलिए उसे काल कहा जाता है। हमें भविष्य की बात करना अपने को धोखा देने जैसा है। यह जानकर भी कि अगले पल का हमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है, हम कैसे भविष्य की योजना बना सकते हैं? फिर विचार आता है कि यदि सभी संसार के लोग ऐसा सोचेंगे तो सृष्टि स्थिर हो जाएगी, दुनिया रुक जाएगी। खुदा की बात कुछ और है गालिब, जन्नत की बात अफवाह सी नजर आती है। अरे जनाब, जब हम वर्तमान को ही नहीं पकड़ सके तो भविष्य की नींव कैसे रखेंगे? ये शुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं है, ये नकारात्मक सोच भी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य, सात्विक और परम कल्याणकारी सोच है। अगर पल में प्रलय होगी तो आज जो हम करना चाहते हैं उसको न करने का अफसोस जीवन भर हमारा पीछा करता रहेगा। इंसान आशावादी होता है। जिस नश्वरता को इंसान अपना मान बैठा है वह उसकी भूल है। वह मैं और मैं करता हुआ एक दिन इस मैं से ही दूर हो जाता है। हम आज, अभी और इसी वक्त अपने शरीर, मन, बुद्धि और चेतना से कर सकते हैं। वही शाश्वत है, वही सुख है और वही संतुष्टि है। हम भविष्य के लिए कल्पनाओं के महल बनाएं अवश्य, लेकिन यथार्थ धरातल पर, क्योंकि नींव जितनी सशक्त होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये शब्द हर पल हमारे चारों तरफ चरितार्थ हो रहे हैं, और एक हम है जो क्षणिक वैराग्य में डूबकर फिर अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं। अगर कबीर ने भविष्य की सत्ता को नकारा तो उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि वह वर्तमान में जीवन की उस दौलत को लुटाने में लग गए थे जो उनके पास अनमोल थी, और शायद इसी कारण उनकी वह बात हम आज भी याद रख रहे हैं। शरीर के सितार में काल के स्वर को उन्होंने समझ लिया था। जीवन के साज को मृत्यु के गीत को बजाने के लिए तैयार कर लिया था। तब उन्होंने कहा था कि जो करना है अभी इसी वक्त करो, नहीं तो प्रलय तो निश्चित है, क्योंकि पल पल वह सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतजार कर रही है। जीवन प्रारंभ होते ही पूरी गति से दौड़ने लगता है मृत्यु को गले लगाने को। क्या ऐसा सच्चा प्रेम कहीं और है? फिर हम क्यों इस प्रेम में बाधा बने? हम क्यों भूत और भविष्य की बात करें? अगर हम बात ही करें तो उस क्षण की करें जब हम सृष्टि और प्रलय के झंझटों से ही दूर हो जाएं। हम अपने मूल अस्तित्व में समा जाएं, हम जीवन मृत्यु के चक्र से परे चले जाएं। अगर हम बात करें तो अपने मूल स्वरूप में लौटने की बात करें।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था कल करें सो आज कर। आलेख श्री सुशील कश्यप का और वाचन स्वर आभा गुप्ता का। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायन स्वर है सुरेश वाडकर का।

धन्य है अवध निवासी जहां स्वयं सच्चिदानंद राजा के रूप में विद्यमान है। उनकी छत्र छाया में इनका जीवन कृतार्थ हो गया है। एक दिवस मुनिवर वशिष्ठ श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए। समुचित आदर सत्कार पाकर कुलगुरु प्रेम विफल हो गए। उन्होंने राजा राम को वो प्रसंग सुनाया जब उन्होंने ब्रह्मा के आग्रह पर सूर्यवंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। बोले, क्यों तो पुरोहिती कर्म बहुत अच्छा नहीं होता। इसी कारण वेद पुराण स्मृति सभी ने इसकी निंदा ही की है। किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ये भार इसलिए ग्रहण करने का परामर्श दिया था कि एक दिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण कर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। अतः जो स्थिति योग यज्ञ दान और तपस्या से प्राप्त होती है वो उन्हें इसी कर्म यानी पुरोहिती के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने याचना की, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में आपका प्रेम अक्षुण्ण बना रहे, कभी कम न हो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायन स्वर था सुरेश वाडकर का। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि सामायिकी। इसमें आज चर्चा का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती, कुछ तकनीकी बातें। जानकारी दे रहे हैं श्री एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों, जैसे जैसे सिंचाई साधनों में बढ़ोतरी हुई है तो वर्ष भर किसान भाई तरह तरह की सब्जियां और दूसरी अन्य फसलें उगा करके अच्छी पैदावार लेने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के लगातार अनुसंधान का ही परिणाम है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी फसलों को उगा करके अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। सब्जियों की खेती भी किसान भाई कुछ न कुछ तो करते ही हैं, लेकिन यही वो उपयुक्त समय है जब हम पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जायद के मौसम में तोरई, करेला, लौकी, खीरा, इसी तरह से ककड़ी, तरबूज, खरबूज इन फसलों को ले सकते हैं। और ये फसलें इन्हीं दिनों बोई जाती हैं। अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण इन फसलों की देखभाल की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्नत शस्य प्रबंधन और पौध संरक्षण तकनीक अपना करके इन फसलों से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी की बात कर लें। खेतों को ट्रैक्टर या देशी हल से 2-3 बार जोतकर पाटा लगा करके समतल कर लें। इसके बाद बोनी कर दें। गर्मी के मौसम में सिंचाई अधिक करने से खरपतवारों की भी समस्या रहती है, तो समय समय पर निदाई गुड़ाई करना ठीक रहता है। इससे खेत की पपड़ी टूट जाती है और पौधों की जड़ों को हवा मिल जाती है और पौधों का विकास भी तेजी से होता है। गुड़ाई के बाद मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पौधों की जड़ों पर चढ़ाना चाहिए। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो गर्मी के मौसम में ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कम पानी में, कम समय में अधिक अच्छा उत्पादन दे सके। गर्मी के मौसम में जमीन पर फैलने वाली फसलों की बोनी करें ताकि पानी का वाष्पीकरण भी कम हो। सामान्य तौर पर 7 दिन के अंतराल पर गर्मी में सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, कौन कौन सी बोई जा सकती हैं, उनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इनके बारे में भी जान लें। तो इसमें करेला की हम बात करें तो पूसा 2 मौसमी, अर्का हरित, प्रिया और KBG6। खीरा की उन्नतशील किस्मों में पूसा शीतल और जापानी लॉन्ग ग्रीन। इसी तरह से लौकी की पूसा नवीन, पूसा

0: समर प्रालिफिक लॉन्ग, पूसा संदेश, अर्का बहार और पंजाब कोमल। चिकनी तोरई की पूसा नसदार, अर्का सुमित, अर्का सुजात, सतपुतिया। कद्दू की पूसा विश्वास और अर्का चंदन। तो ये उपयुक्त किस्में हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की। कद्दू वर्गीय सब्जियों की पोषक मांग अधिक होती है। अधिक उपज के लिए प्रति हेक्टेयर 240 किलोग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा कतार में ही प्रयोग कर दें। बची हुई मात्रा की आधी मात्रा बुवाई के 20-25 दिन बाद देकर मिट्टी चढ़ा देते हैं। शेष मात्रा बुवाई के 40 दिनों बाद सिंचाई करने के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। यदि गड्ढे में बीज बोया जाता है तो प्रत्येक बने गड्ढे में 30 से 40 ग्राम यूरिया, 80 से 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 से 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देकर बोनी करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अच्छा तरीका तो ये है कि संतुलित मात्रा में ही हमें खाद देना है, तो मिट्टी की जो जांच है उसको करा लें तो सही जानकारी हो जाएगी कि खाद कौन सी और कितनी मात्रा में देना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख कर किसान भाई जायद की फसलें बो करके अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि सामाई की। इसमें आज चर्चा का विषय था कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती, कुछ तकनीकी बातें। जानकारी दे रहे थे श्री SS चौधरी। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज की सभा के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद प्रातः 7:05 पर सुनिएगा पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा हमारे केंद्र से सुबह 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 7:10 पर। गांधी चर्चा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:20 पर। हमारे श्रोता फिल्म संगीत का आनंद लेंगे प्रातः 7:35 पर और एक बार पुनः 10:30 पर। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से प्रातः 7:45 पर। सुबह 8:00 सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आप सुन सकेंगे 8:15 पर। हमारे श्रोता आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का सुबह 8:30 पर और एक बार पुनः 9:30 पर। लोकरंग कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोकगीत सुबह 9:00। इसमें आज के कलाकार हैं उत्तम सिंह कुशवा और ओम प्रकाश उदोनिया। सुबह 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। इसमें आज के कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

दिन में 11 बजे से सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। दिन में 1 बजे सुनिएगा महिला कार्यक्रम और 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत। ये तीनों कार्यक्रम छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति रहेगी। संध्या 5 बजे सुनिएगा युववाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। हमारे श्रोता सुनेंगे शाम

7:20 पर कार्यक्रम चौपाल ग्रामीण भाइयों के लिए। इसमें चर्चा के विषय हैं कौशल भारत, कुशल भारत, बायोगैस एक लाभ अनेक, गर्मियों में पशुधन की उचित देखभाल, और साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल। वार्ताकार डॉक्टर नीरज कुशवाहा और आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। साथ ही होगा लोकगीत, मौसम की जानकारी और कल के कार्यक्रम। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वृणीताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी

0: में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्रोताओं समय हुआ है लघु वार्ता का। आज का विषय है वसुंधरा। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर मौजूद सभी प्राकृतिक और मानवीय तत्व, जैसे वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। मनुष्य का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करता है। यदि पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ रहेगा तभी हमारी पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सकेगा। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। श्रोताओं, वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है। नदियों और तालाबों में गंदा पानी तथा कचरा डालने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल कम होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। श्रोताओं, इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और अनेक प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। श्रोताओं, पर्यावरण प्रदूषण केवल प्रकृति को ही नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। दूषित वायु से सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। गंदा पानी अनेक रोगों का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव और सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। यदि समय रहते पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। सबसे पहले हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए तथा पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को अपनाना चाहिए। जल और बिजली की बचत करनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित करना चाहिए। श्रोताओं, विद्यालय और समाज में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। बच्चों को शुरुआत से ही प्रकृति से प्रेम करना सिखाना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

विश्व पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रम लोगों में जागरूकता फैलाने का एक अच्छा माध्यम है। श्रोताओं, पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। यदि आज हम पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, तभी भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ बन सकेगा। स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण ही सुखी जीवन की पहचान होता है। श्रोताओं, हमें ऐसा विश्वास है कि यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो अपने आसपास साफ सफाई का वातावरण बना सकेंगे और इस प्रकार से पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकेंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ कृषि, सिंचाई और यूसीसी जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष यूएई भारत के कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के साथ लगभग 45 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की इन बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्री शाह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान की जानकारी दी।
1: हमारे राज्य के अंदर के नक्सल जिले जो एक तरह से देश के अंदर मध्यप्रदेश का मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का इलाका जो एक राज्य के नाते से नक्सल मुक्त हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है, उससे हमने संतोष व्यक्त किया।
0: वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है।
1: प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात हुई। हमारे लिए राज्य में गेहूं खरीदी को लेकर के देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं की परचेसिंग अगर कहीं हुई है तो मध्यप्रदेश में हुई। 16 लाख मीट्रिक टन का हमारा टारगेट है। आज तक 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा

0: हम गेहूं जमा कर चुके हैं, ऐसे में 100 लाख से भी ऊपर जाने के कारण से हमने पहला जो जोशी जी से निवेदन किया कि वो हमारा टारगेट बढ़ाए ताकि हम और अधिक किसानों से गेहूं खरीद सके।
1: दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने एक सकारात्मक पहल करते हुए मेट्रो से सफर कर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी मेट्रो बहुत उपयोगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसों में घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। हादसे में 27 लोग घायल हुए थे, जिन्हें देवास और इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। देवास जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पवन पाटीदार ने घायलों को लेकर जानकारी दी।
2: हमारे पास सुबह 3:30 बजे खबर आई थी कि टोंककला के पास में पटाखे फैक्ट्री में आग लगी है। तो आसपास जो स्थिति थी उसमें कम से कम हमारे पास 28 लोग आए थे, जिसमें से हमने 13 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया इंदौर के लिए, ताकि 12 लोग हमारे पास स्थिति नॉर्मल थी तो हमने एडमिट कर लिया। मृतकों की एक संख्या बढ़ी थी 4 से।
1: इस बीच पटाखा फैक्ट्री विस्फोट और आगजनी मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री मालिक अनिल मालवी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इधर संभागायुक्त आशीष सिंह ने टोंककला में संचालित आतिशबाजी विनिर्माण एवं विक्रय फैक्ट्री में हुई घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश जारी किए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर आज शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का शुभारंभ करेंगी। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसुमरिया और स्थानीय विधायक भगवान दास सबनानी उपस्थित रहेंगे। भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ये योजना प्रदेश के 20 चयनित जिलों में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य OBC वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य अर्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। योजना में प्रदेश भर से चयनित 4,000 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। IPL में मुंबई इंडियंस ने कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए, जिसके जवाब में 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन और VIP संस्कृति पर बड़ा प्रहार करते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की है। उज्जैन से भोपाल लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे ठाकुर को मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश हीट वेव यानी लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15, 16 और 17 मई को तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। वहीं नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा और झाबुआ में भी तीव्र लू चलेगी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभाग के जिलों में 18 मई तक लू चलने की संभावना है। इसके पहले कल शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत आज से प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर ITI में युवा संगम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडोरी के सांदीपनी विद्यालय प्रांगण अमरपुर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह समारोह में 166 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। मंडला के रामनगर में आज से 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम शामिल होंगे। गुना में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बरसाती नदी एवं सिद्ध की झिरिया क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया और कलेक्टर शाजापुर ने आगामी त्योहारों के चलते प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत बिना अनुमति धरना प्रदर्शन जुलूस रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर सिंहस्थ कृषि सिंचाई और UCC जैसे मुद्दों पर किया मंथन। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री ने जाना हाल। मामले में आरोपी संचालक गिरफ्तार, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। और मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में आज तीव्र लू चलने की चेतावनी जारी की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये FM बैंड 14.2 MHz पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गांधी चर्चा। आज की चर्चा में वाचन स्वर श्री राजेंद्र कुमार का।

सन 1893 में सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा नेताल के हिंदुस्तानी समाज के अग्रगण्य नेता माने जाते थे। सांपत्तिक स्थिति में सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम मुख्य थे, पर वे और दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामों में सेठ हाजी मोहम्मद को ही पहला स्थान देते थे। अतएव उनके सभापतित्व में अब्दुल्ला सेठ के घर एक सभा हुई। उसमें फ्रेंचाइज बिल का विरोध करने का निश्चय किया गया। स्वयं सेवकों के नाम लिखे गए। इस सभा में नेपाल में पैदा हुए हिंदुस्तानियों को अर्थात ईसाई नौजवानों को इकट्ठा किया गया था। मिस्टर पॉल डर्बन की अदालत के दोभाषी थे। मिस्टर सुभान गॉडफ्रे मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे। वे भी सभा में उपस्थित रहे थे और उनके प्रभाव से उस समाज के नौजवान अच्छी संख्या में आए थे। ये सब

कमरुद्दीन सेठ आदमजी मियाँ खान ए कोलंदा वेल्लू पिल्लई सी लक्ष्मीराम रंगस्वामी पड़ियाची आदम जीवा आदि पारसी रुस्तम जी तो थे ही कारकुन समाज में से पारसी मानिक जी जोशी नरसी राम वगैरह दादा अब्दुल्ला इत्यादि की बड़ी

सेवाओं के नौकर थे। इन सबको सार्वजनिक काम में सम्मिलित होने का आश्चर्य हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक काम के लिए नियुक्त जाने और उसमें हाथ बटाने का उनका ये पहला अनुभव था। उपस्थित संकट के सामने नीच ऊंच छोटे बड़े मालिक नौकर हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई गुजराती मद्रासी सिंधी आदि भेद समाप्त हो चुके थे। सब भारत की संतान और सेवक थे। बिल का दूसरा वाचन हो चुका था या होने वाला था। उस समय धारा सभा में किए गए भाषणों में यह टीका थी कि इतने कठोर कानून का भी हिंदुस्तानियों की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है। यह हिंदुस्तानी समाज की लापरवाही का और मताधिकार का उपभोग करने की उनकी अयोग्यता का प्रमाण है। मैंने सभा को वस्तुस्थिति समझाई। पहला काम तो ये सोचा गया कि धारा सभा के अध्यक्ष को ऐसा तार भेजा जाए कि वे बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इसी आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भी भेजा और दूसरा दादा अब्दुल्ला के मित्र के नाते मिस्टर एस्कम को भी भेजा गया। इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2 दिन तक मुलतवी रहेगी। सब खुश हुए। प्रार्थना पत्र तैयार किया गया। उसकी 3 प्रतियां भेजनी थी। प्रेस के लिए भी प्रतियां तैयार करनी थी। प्रार्थना पत्र पर जितनी मिल सके उतनी सहियां लेनी थी। ये सारा काम 1 रात में पूरा करना था। शिक्षक स्वयं सेवक और दूसरे लोग लगभग सारी रात जागे। उनमें अच्छे अक्षर लिखने वाले मिस्टर ऑर्थर नाम के एक वृद्ध सज्जन थे। उन्होंने सुंदर अक्षरों में प्रार्थना पत्र की प्रतियां तैयार की। दूसरों ने उसकी दूसरी प्रतियां तैयार की। 1 बोलता जाता और 5 लिखते जाते थे। यह एक साथ 5 प्रतियां लिखी गईं। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी अपनी गाड़ियां लेकर अथवा अपने चर्च से गाड़ियां किराए पर लेकर सहियां लेने के लिए निकल पड़े। प्रार्थना पत्र गया, अखबारों में छपा, उस पर अनुकूल टीकाएं हुई। धारा सभा पर भी असर हुआ, उसकी चर्चा भी खूब हुई। प्रार्थना पत्र में दी गई दलीलों का खंडन करने वाले उत्तर दिए गए, पर वे देने वालों को भी लचर जान पड़े। बिल तो पास हो गया। सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौम में नवजीवन का संचार हुआ। सब कोई ये समझे कि हम एक कौम हैं, केवल व्यापार संबंधी अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि कौम के अधिकारों के लिए भी लड़ना हम सबका धर्म है। उन दिनों लॉर्ड रिपन उपनिवेश मंत्री थे। उन्हें एक बहुत बड़ी अर्जी भेजने का निश्चय किया गया। इस अर्जी पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहियां लेनी थी। ये काम 1 दिन में तो हो ही नहीं सकता था। स्वयं सेवक नियुक्त हुए और सबने काम निपटाने का जिम्मा लिया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला सो सब मैं पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम एक प्रकार के मताधिकार का उपभोग करते हैं। सिद्धांत की इस दलील को और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है इस व्यवहारिक दलील को मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 सहियां हुई। 1 पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियां प्राप्त हो गईं। इतने समय में नेपाल में 10,000 सहियां प्राप्त की गईं। इसे छोटी मोटी बात न समझें। सहियां समूचे नेपाल से प्राप्त करनी थी। लोग ऐसे काम से अपरिचित थे। निश्चय यह था कि सही करने वाला किस बात पर सही कर रहा है इसे जब तक वो समझ ना दे तब तक सही न ली जाए। इसलिए खास तौर पर स्वयं सेवकों को भेजकर ही सहियां प्राप्त की जा सकती थी।

दूर थे, इसलिए अधिकतर काम करने वाले लगन से काम करें, तभी ऐसा काम शीघ्रता पूर्वक हो सकता था। ऐसा ही हुआ। इसमें सबने उत्साह पूर्वक काम किया। काम करने वालों में से सेठ दाऊद मोहम्मद, पारसी रुस्तम जी, आदम जी मियां खान और आदम जीवा की मूर्तियां इस समय भी मेरी आंखों के सामने खड़ी हैं। वे खूब सहिया लाए थे। दाऊद सेठ अपनी गाड़ी लेकर दिन भर घूमा करते थे। किसी ने जेब खर्च

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 7:35 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म है आराध्या। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत SD वर्मन का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का ये गीत, फिल्म थी आराधना। आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ को फिल्म आखिर क्यों के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज को। फिल्म थी आखिर क्यों, रचना इंदिवर की थी, संगीत राजेश रोशन का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। उपासना रंगड़ की ओर से श्रोताओं, आज 15 मई है। आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परिवार के महत्व को समझना तथा परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान, एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। परिवार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। श्रोताओं, परिवार हमें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन देता है। परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होता है, जहां हमें अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन जीने की सीख मिलती है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी मिलकर परिवार को मजबूत बनाते हैं। श्रोताओं, आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में परिवार के साथ समय बिताना कम हो गया है, इसलिए यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सभी की भावनाओं को समझें। एक कुशल परिवार ही एक अच्छे समाज और उज्जवल भविष्य की नींव होता है। श्रोताओं, परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। श्रोताओं, पहली बार परिवार दिवस 15 मई 1994 को मनाया गया था। तभी से हर साल हम आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। आइए श्रोताओं, इस दिवस पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। इसे हमने लिया है फिल्म हम साथ साथ हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। इसे हमने लिया था फिल्म हम साथ साथ हैं से। आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कुछ समाचारों की तरफ। श्रोताओं, भगवान बिरसा मुंडा योजना में 50 लाख तक का ऋण। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना चलाई जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक ऋण मिलता है। सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। श्रोताओं, शिकायतें बिना समाधान बंद ना हो, TL बैठक में कलेक्टर ने अफसरों को दिए निर्देश। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बुधवार को TL बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि आमजन की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में जन सुनवाई के आवेदन, CM हेल्पलाइन, अलग अलग विभागीय योजनाओं की समीक्षा हुई। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतें बिना ठोस समाधान के बंद ना की जाएं, सभी अधिकारी खुद मॉनिटरिंग करें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 1 मई से शुरू पंजीयन अभियान की समीक्षा हुई और कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत CEO को योजना में तेजी से लाने के निर्देश दिए। कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, इससे आगे चलकर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। बैठक में जल गंगा संबंधन अभियान की समीक्षा की गई और कलेक्टर ने जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधि प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए। तालाबों के जीर्णोद्वार पर जोर दिया, पौधारोपण पर भी जोर दिया और जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। नगरीय विकास विभाग को स्कूल के आसपास से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। श्रोताओं, जिले की नवागत पुलिस अधीक्षक योंगचैन डोलकर भुटिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं, पुलिस कंट्रोल रूम, पेट्रोल पंप, लर्निंग सेंटर पर निरीक्षण किया और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारी और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान SP ने पुलिस लाइन कार्यालय, मालखाना स्टोर, मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा, पुलिस परेड ग्राउंड, CPC और पुलिस कैंटीन, लर्निंग सेंटर, कंप्यूटर कक्ष, CCTV रूम, CCTNS शाखा, पुलिस कंट्रोल पंप का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने संधारित रिकॉर्ड की जांच की, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए।

श्रोताओं, हायर सेकेंडरी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने हायर सेकेंडरी द्वितीय बोर्ड परीक्षा की तिथि में संशोधन किया है। 14 मई की कृषि, होम साइंस और अकाउंटेंसी परीक्षा अब 19 मई को होगी, जबकि 21 मई की गणित और मनोविज्ञान की परीक्षा 26 मई को आयोजित होगी। यह बदलाव CUET UG 2026 परीक्षा को देखते हुए किया गया है। श्रोताओं, प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वर्ष 2026-27 में बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दसवीं में बेसिक मैथ पढ़ने वाले भी अब बन सकेंगे इंजीनियर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल के हजारों छात्रों को बड़ी राहत दी है। ये वे छात्र हैं जिन्होंने अब तक बेसिक मैथ्स की तैयारी की थी और वे आगे मैथ्स लेकर पढ़ाई करना चाहते थे। इसी सत्र से ये छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगे। MP बोर्ड ने CBSE की तर्ज पर 2024-25 में पहली बार दसवीं में मैथ्स के लिए दो विकल्प, बेसिक और स्टैंडर्ड की व्यवस्था लागू की थी। बोर्ड ने हाल ही में आदेश जारी किया कि पुराने प्रतिबंध को खत्म किया जाए और इसके तहत दसवीं के बेसिक मैथ्स चुनने वाले छात्र 11वीं में मैथ्स नहीं ले सकते थे। अब छात्र क्षमता और प्राचार्य की अनुमति से 11वीं में गणित विषय लेकर इंजीनियरिंग की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। अब तक बेसिक मैथ्स में 10वीं के पास करने वाले को आगे मैथ्स चुनने के लिए पूरक परीक्षा में स्टैंडर्ड मैथ्स की परीक्षा पास करनी होती थी। वे अब बिना कोई सप्लीमेंट्री परीक्षा दिए सीधे PCM ग्रुप में एडमिशन ले सकेंगे। अब बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों में छात्र 11वीं में मैथ्स के लिए पात्र हैं। श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार शिवप्री के इस अंक से दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज

0: कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ

0: सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। इस गीत को सुनना चाहा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर फिल्म साजन का ये गीत। आवाज़ है अलका याग्निक की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी साजन। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला खत हमें आया है अमित निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, पारस मणि और संदीप पाटिल का। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म नया दौर का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

0: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। अगला फरमाइशी गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म है लीडर। इस गीत को सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्च ललिता नारायण गणेश कार्तिक संजना मालती और स्वाति ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म लीडर का ये गीत।

0: कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी लीडर। अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहा है लेवा खेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से नारायण भाऊ, ललिता परी, गणेश कार्तिक। आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म है महबूब की मेहंदी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी महबूब की मेहंदी। अगला फरमाइशी खत आया है पटेल नगर मलोट पंजाब से, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू। आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर का गाया ये गीत, फिल्म थी मेरे हमसफ़र। और इस गीत को सुनना चाहा था रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने को हैं।

FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज आप सुनेंगे उत्तम सिंह कुशवा और ओम प्रकाश उदोनिया को। तो श्रोताओं, पहले हम सुनते हैं उत्तम सिंह कुशवा के गाए कुछ लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह कुशवाहा का गाया ये लोकगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। अभी आपने सुना उत्तम सिंह कुशवाहा का गाया ये लोकगीत। आइए सुनते हैं एक बार पुनः उत्तम सिंह कुशवाहा का लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उत्तम सिंह कुशवाहा का ये लोकगीत। कार्यक्रम लोकरंग में आइए अब सुनते हैं ओम प्रकाश उदयनिया के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। अभी आपने सुना ओम प्रकाश उदयनिया को। आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, और अभी आपने सुना ओम प्रकाश उदयनिया का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम लोक रंग में आइए सुनते हैं अंतिम प्रस्तुति ओम प्रकाश उदयनिया की।

ओम प्रकाश उदेनिया के गाए इस लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुने उत्तम सिंह कुशवाहा और ओम प्रकाश उदेनिया के कुछ लोकगीत। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में पहला खत हमें आया है इंदिरा विहार रायगढ़ से। अक्रम नूरजहां, डब्बू नूरजहां, सईद वसीम और वली उल्लाह नूरजहां का। साथ ही राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा का। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म है अभिलाषा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आंडी वर्मन का, फिल्म थी अभिलाषा। अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप राशि, श्रीमती शीतल राजेश ने, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपा तिवारी ने। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा का यह गीत।

0: शो तो हम अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म पाकीजा के लिए। अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहा है महादेव घाट टबलेश्वर से सोमन ठाकुर, डोमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर ने। आइए हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं मुकेश को। फिल्म है पत्थर के सनम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश को, फिल्म थी पत्थर के सनम। अगला फरमाइशी गीत सुनना चाह है एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर से, रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक और संजना। आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पांडवाल को, फिल्म है प्रेम गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल का गाया यह गीत। फिल्म थी प्रेम गीत, रचना इंदिवर की, संगीत जगजीत सिंह का। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आप सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद का गीत। इस गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये तन्मय बेबिया नामिका राधिका गजभिये। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, वीर सिंह, लखविंदर संधू, गुरचरण, रमेश मिगलानी ने। तो आइए हम हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं गीता दत्त का गाया गीत। फिल्म है प्यासा।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त को, फिल्म थी प्यासा। इसी के साथ आप कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य 1 मई से प्रारंभ किया गया, जो 30 मई तक चलेगा। मकान सूचीकरण के लिए जिले में 2985 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें से 2180 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में मकान सूचीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में मकान का सूचीकरण 73% तक पूरा हो चुका है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डीपी वर्मन ने बताया कि नगरपालिका मलाजखंड द्वारा 14 मई को ही मकान सूचीकरण का 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया और बालाघाट जिले में 14 मई तक 73% मकान सूचीकरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खातों में 1500-1500 रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में 36वीं किस्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई, जिनमें बालाघाट जिले की 3,44,240 लाडली बहनों के खातों में 50,11,37,100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले में मलेरिया उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस की थीम मलेरिया समाप्ति के लिए संकल्पित अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा रही। इसी क्रम में जिला मुख्यालय बालाघाट में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा पंचायत विभाग के सहयोग से जिले भर में जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से मलेरिया से बचाव, रोकथाम और समय पर उपचार संबंधी जानकारियां आम जनों तक पहुंचाई गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जैव विविधता संरक्षण के अगले अध्याय के रूप में पिछले दिनों जंगली भैंसे की पुनर्स्थापना योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से लाए जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र में सॉफ्ट रिलीज किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश के लिए यह दिन ऐतिहासिक है। लगभग 100 वर्ष के बाद प्रदेश की धरती पर जंगली भैंस का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्य हो रहा है। बालाघाट जिले के जंगल में छोड़े गए जंगली भैंसों में से 3 मादा और 1 नर शामिल है। जिले में टाइप 1 डायबिटीज T1D से प्रभावित बच्चों और मरीजों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुस्कान OPD में प्रत्येक शुक्रवार को T1D फॉलो अप क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जहां मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, मधुमेह शिक्षा तथा इंसुलिन उपलब्ध कराई जा रही है। ये क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होता है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 8 मई को क्लिनिक का निरीक्षण कर वहां उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों एवं चिकित्सकों से चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों को निशुल्क ग्लूकोमीटर एवं इंसुलिन का वितरण भी किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले के कुल 24 न्यायिक खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 1085 प्रकरण विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 1009 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्री लिटिगेशन के 835 प्रकरणों में से 780 प्रकरणों का निराकरण कर 1,60,91,443 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं न्यायालयों में लंबित 250 प्रकरणों में 229 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिससे 1,57,47,930 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इस प्रकार कुल 3,18,39,373 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में संचालित आरोह 2026 महा अभियान के अंतर्गत जिले में 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बालाघाट के मुल्ला स्टेडियम मैदान, कराटे इंडोर हॉल, म्यूनिसिपल ग्राउंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी फीडर सेंटर सहित जिला एवं विकास खंड मुख्यालयों पर नए स्वरूप में खेल शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इस शिविर के दौरान खेल प्रशिक्षण के साथ जुम्बा एक्सरसाइज, योगाभ्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने जैसी गतिविधियाँ भी कराई जा रही है। इसके

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। इसमें आज के कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं सुरेश वाडकर। अगली प्रस्तुति सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर को और कार्यक्रम था सुगम संगीत। इस गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म है कोरा कागज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी कोरा कागज। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है झुक गया आसमान।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी झुक गया आसमान। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है ममता और आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ममता फिल्म का ये गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा इस अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में। फिल्म है नदिया के पार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह और हेमलता को। फिल्म थी नदिया के पार। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं फिल्म नसीब का ये गीत। आवाज़ें हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों की।

0: श्रोता हूँ फिल्म नसीब के इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। श्रोताओं

0: हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड लगा सकते हैं 0755। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे यदि आपका फोन कार्यक्रम में हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया ना लगाएं और हमारे नए श्रोताओं को मौका दें। और अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन है। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या हाल है?
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, महीने साल भर का ऐसा लग रहा है मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए वो क्या होता है, दिल से दिल की राह होती है ना।
1: जी जी
0: जी जी।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेलवाला।
0: मांगीलाल जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल आपकी दुआ से बढ़िया है और सब आनंद है, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया। सर जी, फिल्म का नाम रहेगा शहनाई।
0: शहनाई
1: जी,
0: अरे वाह, क्या
1: वाली
0: पुरानी वाली शहनाई।
1: चलिए,
0: तो आपने कॉल किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम
1: कुछ मित्रों को याद करते
0: हैं। हाँ बिल्कुल, कर लीजिए।
1: दिनकर सिंह जी है चित्रकूट धाम से, और फूलचंद पाल जी है मनकारी से, प्रेमदास बाबा जी है, बेटा सिंह यादव जी है, केसरी सिंह राजपूत जी है, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी है, नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, इन सभी को सर जी यह गाना डेडिकेट रहेगा।

0: गर्मी 2 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: तो
0: आप ज्यादा ही पड़ रहे हो क्योंकि आप अभी पास नहीं हो हमारे, कोई ज्यादा दूर
1: हाँ,
0: नहीं
1: हम लोग जरा सूरज के करीब हैं थोड़े से।
0: है।
1: अच्छा बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम वक्त की आवाज और गाने की कौन है?

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। आपने कॉल किया है, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए।
1: सर मैं शिवानी मेहरा बात कर रही हूँ नीमच से।
0: अच्छा शिवानी, कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: सर मूवी का नाम है जीने की रहार, गाने के बोले आने से उसके आए बाहर।
0: नीमच में गर्मी वगैरह कैसी पड़ रही है?
1: सर बहुत गर्मी है यहाँ तो।
0: और ये है कि इतनी गर्मी में आप कौन सा गाना सुनना चाह रही हैं?
1: जीने की रहा।
0: नहीं नहीं गाने के बोल क्या हैं?
1: गाने के बोल हैं आने से उसके आए बाहर।
0: हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में किसी के आने से
1: बारिश हो जाए सर तो अच्छा है।
0: अच्छा चलिए सही बात है।
1: सर गर्मी तो बहुत है और यहाँ तो लाइटें भी चली गई है।
0: अभी चली गई या बहुत देर से गई है?
1: नहीं सर सुबह से गई है यहाँ तो आज।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो गर्मी के बगैर कैसा लगता है, मजा आता है गर्मी का?
1: नहीं सर मजा तो नहीं ना आता है
0: नहीं तो
1: गर्मी
0: देखिए
1: में।
0: मजा तो ये देखिए ये तो अगर पहले बहुत पहले की बात करें तो लाइट नहीं हुआ करती तो भी लोग एंजॉय किया करते थे।
1: हाँ सर कर किया करते थे लेकिन आज की जनरेशन में सर लाइट नहीं हो तो क्या ही एंजॉय, क्योंकि फोन वगैरह चार्ज नहीं देंगे तो फिर क्या ही।
0: हाँ फोन के बिना तो आजकल जीवन
1: फोन
0: अधूरा
1: के
0: है
1: बिना जिंदगी नहीं अभी तो।
0: ये बात भी सही है। चलिए ठीक है, तो आपने गाना भी बता दिया और सारी चीजें बता दी, तो हम अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको गाना सुनवा दें।
1: जी सर थैंक यू।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए सबसे पहले तो।
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ।
0: इंदौर से तो बोल रही हैं आप, नाम भी तो होगा आपका कुछ।
1: जी है ना, जीनत परवीन, कोहिनूर कॉलोनी से।
0: जी जीनत परवीन। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनेंगी?
1: गाना प्रेम रोग का।
0: प्रेम रोग का कौन सा? मैं हूँ प्रेम रोगी
1: जी। कुछ नहीं जब रोग ये लग जाता।
0: हाँ हाँ बहुत अच्छा गाना है ये, सुरेश वाडकर की आवाज है।
1: जी
0: रेडियो सुनती हैं आप?
1: रेडियो चलते ही रहता है।
0: अच्छा रेडियो चलता रहता, देखिए चलते रहता है तो इस वजह से आप पूरे प्रोग्राम सुनती होंगी।
1: सब
0: तो
1: सुनती हूँ।
0: आकाशवाणी इंदौर सुनती हैं या आकाशवाणी मध्य प्रदेश सुनती हैं या आकाशवाणी भोपाल सुनती हैं, क्या सुनती हैं आप?
1: सब सब सुनती हूँ, सब पे लगा लेती हूँ।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है।
1: इंदौर भोपाल लखनऊ।
0: नई तकनीक का यही फायदा है कि
1: जी
0: हम घर बैठकर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं,
1: जी
0: है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है प्रेम साहब, क्या बात है
1: जी, कैसे हैं सर आप?
0: अरे बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ और आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपसे बात करता रहूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, हमारे भी दिल चाह रहा है कि हम आपसे बात करते रहें।
1: जी
0: तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुझे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
0: कुली नंबर वन,
1: और हाँ जी, उसका है ना वो, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना।
0: क्या बात है क्या बात है, जब दिल न लगे। हाँ, तो अभी आपका दिल नहीं लग रहा?
1: जी, हमारा दिल तो हमेशा लगा रहता है, आकाशवाणी सुनते रहते हैं। और जब सबसे ज्यादा हमें लोकप्रिय कार्यक्रम लगता है आकाशवाणी भोपाल का, कोई मतलब फोन करेगी सुने।
0: अभी ये आकाशवाणी भोपाल नहीं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी
0: अच्छा, और बताएं बाकी कैसे क्या हाल चाल है वहाँ आपके उज्जैन में, महाकाल की नगरी है, अभी
1: जी
0: गर्मियों के
1: बिल्कुल,
0: क्या हाल
1: सभी
0: है?
1: अच्छे हैं। अभी गर्मी काफी हो गई है और अभी 2028 में सिंहस्थ लगेगा ना,
0: हाँ,
1: तो उसकी काफी तैयारियां हो चुकी हैं। रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, मंदिर के आसपास में काफी जगह कर दी गई है, और
0: हाँ
1: मतलब एरोप्लेन की भी व्यवस्था कर दी गई है, और रेलवे स्टेशन पे भी मतलब है ना ऐसे कैमरे लगा दिए गए हैं, और ताकि यात्रियों को आने जाने वाले को कोई असुविधा ना हो।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। तो आपने गाना भी बता दिया मुझे और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए
1: जी
0: भी।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: सर मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ, शहडोल एमपी से। सर
0: मोहम्मद सलमान। मुझे एकदम से लगा कि सलमान खान तो नहीं बोल रहे।
1: अरे नहीं सर, और सुना ये कैसे हैं सर आप?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जगह का नाम क्या बताया?
1: सर हम शहडोल से बोल रहे हैं।
0: तो शहडोल का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि शहडोल?
1: शहडोल शहडोल कहे तो सर क्या कहते हैं, तो फिर क्या बहुत क्या पुराना शहर है सर, और इसका नाम शुरू से यही है सर।
0: अच्छा यही है तो मतलब अपन का कोई योगदान नहीं है, पहले ही रख दिया इसका नाम।
1: जी।
0: चलो ठीक है, मैंने कहा शायद कुछ इतिहास होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना।
1: हाँ
0: चलिए अच्छा बताइए मुझे कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मेरे को सर गाना सुनवा दीजिए सर। फिल्म का नाम है, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, फिल्म का नाम है सर फिर क्या कुली,
0: कुली। क्या बात है कुली।
1: और गाने के बोल हैं क्या मुबारक हो तुमको ये हज का महीना।
0: अरे क्या बात है।
1: तो हज में क्या कहते अम्मी और अब्बू हमारे गए हैं सर, तो फिर क्या कहती है, तो फिर ये गाना सुनना चाहते हैं सर।
0: अरे वाह क्या बात है। और देखिए कि हज पे गए हैं और
1: जी
0: आपको, और आपका फोन भी लग गया है, तो मतलब ये कि जा चुके हैं या जाने वाले हैं?
1: तो फिर क्या कहते जा चुके हैं सर,
0: अच्छा
1: हज
0: जा
1: में जा
0: चुके।
1: चुके हैं।
0: अच्छा चलिए तो आप सुनिएगा गाना और अपने दोस्तों को भी सुनवाइएगा ये गाना।
1: जी सर,
0: आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सर, शुक्रिया सर।

0: कार्यक्रम फोन करेंगी सुनो में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते।
1: बॉबी रायकवार बात कर रहा हूँ सर, कोटा से। सब
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: बढ़िया सर, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: क्या बात कर रहे हो।
1: सर राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: राजस्थान? हाँ, वैसे भी क्या है, राजस्थान रेगिस्तान लगा हुआ है
1: हाँ
0: वहाँ। हाँ जी, तो गर्मी तो होगी। और अभी टेम्परेचर कितना होगा?
1: सर, यहाँ पर 42 है अभी तो, और दिन में और बढ़ जाएगा सर।
0: अच्छा, दिन में और बढ़ जाएगा।
1: हाँ सर,
0: ओहो, तो घर से
1: कल ऐसा
0: बाहर
1: ही हुआ
0: निकलना
1: था।
0: तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना।
1: हाँ सर, बहुत।
0: तो फिर क्या करते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है? तो घर में रहते हैं।
1: सर ज्यादा गर्मी होती है तो फिर कूलर चलाते हैं।
0: अच्छा, कूलर चला लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है। अच्छा बताओ, कौन सा गाना सुनोगे?
1: मैंने प्यार किया का कहे तो उसे सजना।
0: अच्छा, मैंने प्यार किया है कुछ इसमें, यही गाने क्यों पसंद है?
1: सर पुराने गाने ही पसंद है।
0: अच्छा, तो कहो क्या गाने के बोल क्या हैं?
1: कहे तो उसे सजना।
0: चलिए, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फोन करेगी सुन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, मैं जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ।
0: जितेंद्र पंडोले। जितेंद्र जी
1: जी
0: कहाँ
1: सर,
0: से
1: ग्राम
0: बोल रहे
1: मंदान,
0: हैं?
1: जिला छिंदवाड़ा से। जी
0: छिंदवाड़ा से।
1: सर,
0: बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं?
1: सर मैं अभी फिलहाल तो PhD कर रहा हूँ,
0: अरे वाह,
1: रिसर्च स्कॉलर हूँ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, और साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ सर UTT डिपार्टमेंट में।
0: अच्छा, मतलब पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है।
1: जी, सर
0: और यही बात होती है कि देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कुछ काम शुरू कर देते हैं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: लोग
1: जी
0: ऐसे
1: सर
0: होते हैं कि पढ़ाई के समय कुछ नहीं करते, फिर उनके लिए डबल स्ट्रगल होता है। तो मेरा मानना है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब से आप अपना कुछ भी काम छोटा मोटा शुरू कर दीजिए, और जब आपकी पढ़ाई
1: जी
0: होगी तब तक आप बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा,
1: जी
0: ये तो हो
1: जी
0: गई वैसी बात। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: सर मैं गाना सुनना चाहूंगा, मूवी का नाम तो पता नहीं
0: हाँ,
1: बट गाना है
0: गाना याद नहीं आ
1: ये,
0: रहा।
1: हाँ ये रात भीगी भीगी,
0: अच्छा, ये रात भीगी भीगी।
1: आपकी
0: हाँ
1: आवाज भी बहुत मधुर लगती है जावेद सर, आपको मैं तो हरदम सुनते रहता हूँ जब
0: क्या
1: जब भी
0: बात है,
1: आपकी
0: क्या
1: मूवी
0: बात है।
1: लगती होगी।
0: हाँ, तो हमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और जब हमारे श्रोताओं का फोन आता है ना, हमें ऐसा लगता है
1: जी
0: कि हम इनसे बात करते रहें, लेकिन समय की कुछ पाबंदी होती है कि हम उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते।
1: जी जी जी
0: चलिए,
1: जी
0: मगर आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, आप जरूर सुनिएगा।
1: जी जी सर, धन्यवाद सर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। इसराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच वॉशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति की खबर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से चुनाव सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। फर्जी विश्वविद्यालयों और अवैध शिक्षण संस्थानों के जाल से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उज्जैन से भोपाल अपने काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचे मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही मामले के निराकरण तक उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार निरस्त कर दिए गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं देवरी भाटरपारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी शर्मा वर्मा, गणेश मिस्त्री। इसी गीत को सुनना चाह है अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवा पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सभी ने सुनना चाहा है सड़क फिल्म का ये नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार की फिल्म का नगमा। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। सुनने की ख्वाहिशमंद अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। तनतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और छाविंद्र कुमार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता और ताशु। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अभिलाषा फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, तर्ज बनाई है आजी बर्मन ने।

0: लगा लो, कोनो सब्जी भाजी लगा लो, उम्दा खेती के लाने सुनो, ग्राम सभा हो बढ़िया, खेती के लाने सुनो, ग्राम सभा हो।
1: ग्राम सभा प्रतिदिन शाम 7:21 पर खेती किसानी की समसामयिक जानकारियाँ, कृषि विशेषज्ञों से सलाह, बुंदेली समाचार, लोकगीत और मौसम की जानकारी, सुनते रहिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
2: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
3: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है, भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का दूसरा भाग।

0: सुधी जन को मेरा बारंबार प्रणाम। पंचतंत्र की कथाएं सचमुच मोहित करने वाली होती हैं। पिछली कथा में मैंने बताया दमनक ने संजीवक से वचन लिया कि राजा से मित्रता करके वो दमनक को भूल ना जाए, नहीं तो दंतिल ने गौरव को अपमानित करके जो भूल की थी वही हालत संजीवक की होगी। और दमनक ने संजीवक को दंतिल की कथा कुछ यूं सुनाई।
1: वर्धमान नाम का एक नगर था, वहाँ एक दंतिल नामक आभूषणों का व्यापारी था। वो राजा का विशेष कृपा पात्र था। कहा जाता था उसके समान चतुर व्यक्ति शहर में नहीं था। एक बार की बात है, गौरम नामक व्यक्ति जो राज दरबार में सेवक था वो दंतिल से अपमानित हो गया।
2: समझता क्या है वो दंतिल? महाराज का बड़ा मुंह चढ़ा है ना, सबके सामने मुझे अपमानित करके उसने अच्छा नहीं किया। इस भांडपति दंतिल को राजा की कृपा से वंचित ना करा दूं तो मेरा नाम भी गौरव में नहीं। परंतु कैसे उसकी कुछ भी क्षति करना मेरे बस में नहीं है। क्या करूं क्या?
3: क्या हुआ, इतनी देर रात किस पर इतने क्रोधित हो रहे हो? आज तक तुम्हें ऐसे अपशब्द बोलते मैंने कभी नहीं सुना। देख रही हूँ कल रात से ही परेशान से दिखाई दे रहे हो।
2: नहीं भगवान, जब दिल दुखता है तभी हाय निकलती है। दंतिल आजकल आसमान में उड़ने लगा है।
3: दंतिल? कौन दंतिल? वही व्यवसायी।
2: अरे छोड़ो, बड़ा आया व्यवसायी, अपने आप को महाराज का सगा वाला समझने लगा है।
3: क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया उसने?
2: ये कुछ मत पूछो। मैं उस रात को उस दंतिल की बेटी की विवाह समारोह में गया था ना।
3: हाँ?
2: पूरा राज परिवार भी वहाँ पर उपस्थित था।
3: हाँ?
2: मैं महाराज के साथ ही था। मुझे वहाँ पर महाराज के पास बैठा देखकर उसने मुझे बहुत अपमानित किया।
3: हुँ?
2: और धक्के देकर विवाह स्थल से निकाल दिया।
3: क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। परंतु परंतु आप शांत रहिए, अपने जीव को दुखाइए मत। शुभ कार्य में किसी निर्धन का श्राप लेकर वो भी सुखी नहीं रहेगा। सुनिए, चलिए सो जाइए, बहुत रात हो गई है।
2: नींद किसे आएगी, मेरे तो सीने में आग जल रही है। जब तक उससे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हाँ, एक ही उपाय है। अपने आप को महाराज के बहुत निकट समझता है ना, क्यों ना उसके विरुद्ध महाराज के कान भर दूं। फिर जो करना है वो महाराज स्वयं ही करेंगे।
4: अरे गौरव
5: जी,
4: आज सूर्य उदय के पूर्व ही तुम्हारा काम शुरू हो गया और मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई।
5: क्या करूं महाराज, एक घटना देखकर रात भर नींद ही नहीं आई
4: है,
5: इस कारण जल्दी ही काम पर आ गया।
4: ऐसी कौन सी घटना देख ली तुमने?
5: कैसे कहूं महाराज, मैं तो साहस ही नहीं जुटा पा रहा हूं।
4: निर्भय होकर कहो।
5: क्षमा चाहता हूं महाराज, उस दंतिल की दृष्टता तो देखी है, उसका साहस नाना महाराज मैं ना कह पाऊंगा।
4: देखो, जो बात शुरू की है उसे पूरा करो, मेरा आदेश है।
5: उसका साहस इतना बढ़ गया है कि वो महारानी का आलिंगन करने लगा।
4: क्या बक रहे हो गौरम, होश में तो हो। महारानी का आलिंगन? दंतिल?
5: अपराध क्षमा करे महाराज, अपराध क्षमा करे महाराज, जुआ खेलते हुए रात नशे में मुझे नींद नहीं आई। मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा हो सकता है उसी का असर हो।
4: दोष, बिना विचारे इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अभी यहां से निकल जाओ।
5: जो आ गया महाराज मैं चला।
6: कहीं ऐसा तो नहीं ये गौरम सच ही कह रहा हो, दंतिल के साथ साथ ये भी तो अंतापुर में बेरोक टोक जाता था। महारानी की दंतिल के प्रति किंचित आ सकती हो? तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतः मनुष्य। नहीं, आज के बाद दंतिल का राजभवन में प्रवेश बंद बंद बंद बंद बंद बंद।
7: दंतिल जी, आपका राजभवन में प्रवेश निषेध हो गया है।
8: अरे ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं महाराज का विशेष कृपा पात्र हूँ।
7: परंतु महाराज ने स्वयं ही ये आदेश दिया है।
8: हूँ, मैंने तो सपने में भी राजा अथवा उनके किसी प्रियजन का अनिष्ट नहीं किया, फिर महाराज मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गए?
5: अरे भाई द्वारपाल
7: जी,
5: सावधान रहना, ये श्रीमान दंतिल जी हैं, राजा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हें राजा की ओर से पुरस्कार अथवा दंड पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन्हें रोकने से आप लोग भी मेरी तरह अपमानित हो सकते हैं।
8: लगता है ये सारी चाल गोरम्भ की ही है। अरे भाई गोरम्भ, भाई गोरम्भ, मुझे अपने किए पर पश्चाताप है, आप कृपया उस अपमान को भूलकर मुझे क्षमा कर दें।
5: आपने मुझसे क्षमा मांगकर मेरे मन का कलुष मिटा दिया। आपने सबके सामने क्षमा मांगकर मुझे बहुत सम्मानित किया है। अब आप मेरे बुद्धि कौशल एवं राजा के अनुग्रह को देखिए।
8: आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।
5: महाराज की जय हो, आप सर्वज्ञ हैं, परंतु शौच स्नान आदि क्रिया के समय ककड़ी खाना उचित नहीं है महाराज।
4: गौरम, कैसी अनर्गल बात कर रहे हो, क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है?
5: देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जागता रहा हूँ, नींद के नशे में मेरे मुख से कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा करें महाराज।
6: मैंने जन्म से आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं किया। इसने अर्ध निद्रा में जिस प्रकार की ये बात कही, संभवतः दंतिल की कहानी भी झूठी हो।

0: ये तो सो गया, अब मैं क्या करूं? देवदत्त के पास कैसे जाऊं? ये कलिका तो इधर ही आ रही है। सखी कलिका, कलिका सुनो।
1: अरे सखी, अरे देवदत्त वहां तुम्हारी बाट जो रहा है, तुरंत जाओ।
0: लेकिन मेरी दशा तो देखो, मैं कैसे जा सकती हूँ? सुनो, तुम जाकर उससे कह देना कि आज रात्रि में उससे मेरी भेंट होना संभव नहीं है।
1: नहीं, ये उचित नहीं। तुमने उसे वचन दिया था, अरे वो बाट जो रहा है।
0: अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ सखी, कि इस कठिन बंधन में रहकर मैं कैसे वहां जा सकती हूँ? और ये मेरा पापी पति भी तो यहीं पड़ा है।
1: अरे सखी, शराब के नशे में बेहोश ये सूर्योदय के बाद ही जागेगा। ऐसा करो, मुझे अपने स्थान पर बांधकर तुरंत ही देवदत्त से मिलाओ।
0: हाँ हाँ हाँ सखी, यही ठीक रहेगा। तुम जो कहती हो मैं वही करूंगी।
1: रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया। सखी को अब तक आ जाना चाहिए था। अरे अरे, कहीं ये नींद से जाग न जाए।
2: अरे अरे, पापिस ठाक कुलटा, यदि आज से तू पर पुरुष गमन नहीं छोड़ते तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल,
1: कुछ बोलो तो ये मेरी आवाज पहचान लेगा। मैं चुप ही रहूंगी, मैं चुप ही।
2: अरे बोल, तू बोलती क्यों नहीं? बोल, तू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? हाँ, नहीं बोलेगी। रुक रुक, अबे रुक, मैं तेरे शस्त्र से तेरे नाक काट दूंगा। अबे ले, ले।

0: देव शर्मा तो इस पूरी घटना को देख रहा था। धन चोरी होने के कारण उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो जुलाहे की पत्नी की उल्टा प्रवृत्ति को देख रहा था। प्रेमी से मिलने के बाद रात के अंतिम प्रहर में जब जुलाहे की पत्नी घर वापस आई, तब
1: सखी कलिका, तुम सकुशल तो हो ना? कहीं मेरे जाने के बाद ये पापी उठा तो नहीं था?
2: तुम आ गई, नासिका को छोड़कर बाकी मैं सकुशल हूँ।
1: क्या
2: तुम शीघ्र मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जिससे इस पापात्मा के देखने के पूर्व ही मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे पति भी लौटते होंगे, मुझे शीघ्र ही घर पहुँचना होगा।
1: हाँ सखी अवश्य। परंतु सखी, तुम अपने पति से नासिका के घाव के विषय में क्या कहोगी?
2: देखती हूँ कोई न कोई उपाय तो निकल ही आएगा। अब देर मत करो, आओ आओ मैं तुम्हें बांधू।
1: हाँ,
2: लो बांधो।
3: क्यों पर पुरुष गामने, अब भी कुछ बोलेगी या नहीं? आए, नाक तो मैंने काट दी, क्या कान भी काट कर और कठोर दंड दूं? बोल।
4: अरे मूर्ख पापी, मेरे जैसी सती नारी को कौन अपमानित कर सकता है? बड़े आए मुझ पर संदेह करने वाले। समस्त लोकपाल मेरी बात ध्यान से सुने। यदि मेरे मन में भी सतीत्व है और मैंने कभी स्वप्न में भी पराए मर्द की कामना नहीं की है, तो देवतागण मेरी नासिका को पहले जैसा अक्षत बना दें। और यदि मेरे कहे वचन में तनिक भी मिथ्या हो, तो ईश्वर मुझे जलाकर राख बना दें।
3: अरे जा जा, बड़ी देखिए तेरे जैसी सती, जरा चेहरे से हाथ तो हटा।
4: देख दुष्ट, देख मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पूर्ववत ठीक हो गई है।
3: ये कैसे हो सकता है, नीचे खून अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने खुद प्रहार किया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? तो क्या मेरी पत्नी सचमुच निर्दोष है? मैंने व्यर्थ ही पाप मोल लिया? गांव वालों

0: की बातों में आकर मैंने सीता जैसी पत्नी पर संदेह करके घोर अन्याय किया है। देवी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देवी। आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो। ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे, ईश्वर मुझे पश्चाताप का मौका दे। बैठो बैठो।
1: हाँ अब ठीक है।
2: हे प्रभु, ये स्त्रियां तो असुरों की भांति माया जानती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सन्यासी हूं, संसार के इस माया जाल से दूर।
1: मुझे मुझे तुरंत ही घर पहुंचना होगा। मेरी नासिका से जो खून बह रहा है उसका क्या करूं? अभी से मेरे स्वामी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सखी को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गई। क्यों घर आ गया, अब क्या करूं?
3: प्रिये, प्रिये, प्रिये, प्रिये, सुनो, आज बड़ा विलंब हो गया है, सूरज चढ़ाया है। मैं वो मुझे राज दरबार में बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए शीघ्र पहुंचना है। तुम एक काम करो, मेरे औजारों की पेटी जल्दी दे जाओ तो मैं चला जाऊं जल्दी।
1: ये मौका अच्छा है। मैं धारदार उस तरह उसकी ओर जोर से फेंकती हूँ। अगर वो मेरी ओर उसे वापस फेंक देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये ले, पकड़।
3: अरे, अरे, ये कौन सा तरीका है? मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इस कारण तेरा साहस अत्यधिक बढ़ गया है। अपने स्वामी के लिए कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, ठीक है, तुझे उचित दंड देना होगा। ले ये उस्तरा।
4: मैं मर गई। कोई है इस पापी ने बिना किसी अपराध के ही मुझ जैसी पतिव्रता नारी की नाक

0: न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
1: श्रीमान, इस नापित ने बिना किसी अपराध के ही अपनी स्त्री का अंग भंग कर दिया है, अतः इसे उचित दंड दें।
0: नापित, तुमने अपनी पत्नी पर प्रहार क्यों किया? क्या इसने परपुरुष गमन किया था? क्या चोरी की थी? इसका अपराध क्या है, बोलो। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा मौन तुम्हें अपराधी साबित करता है। सिपाहियों का कथन भी ठीक जान पड़ता है। तुम दोषी हो। इस निर्दोष स्त्री पर प्रहार करके तुमने घोर अपराध किया है, अतः तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा।
2: महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
0: कौन हो तुम जो इस समय अदालत की कार्रवाई में दखल दे रहे हो?
2: मैं सन्यासी हूँ। मेरा नाम देव शर्मा है। ये बेचारा नापित अन्याय पूर्वक मारा जा रहा है। ये निरपराध है। मेरी बात आप ध्यान पूर्वक सुने।
3: और फिर देव शर्मा ने सविस्तार दोनों वृत्तांत को सुनाया। उसकी बात को सुनकर न्यायपाल ने नापित को मुक्त कर दिया और कलिका को दंड स्वरूप कान काटने का आदेश दिया। देव शर्मा ये सब देखकर अपने धन की चोरी को भूलकर पुनः मठ में लौट गया। दमनक की ये कथा सुनकर करकट संतुष्ट हुआ या नहीं, या दमनक को कोई और कथा सुनानी पड़ी, ये जानने के लिए कीजिए अगले सप्ताह का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। इससे पहले हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही थी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। प्रदेश में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के चयनित 4,000 प्रतिभागियों को आज से जिला स्तर पर 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी वर्गों और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए संभाग और जिला स्तर पर दल भेजे जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, झाबुआ जिले के लिए तीव्र लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैनों, परिवार किसी भी सामाजिक ढांचे की रीढ़ की तरह काम करता है। दुनिया के हर देश में परिवार होता है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और कई रिश्ते जुड़े होते हैं। हर शख्स के लिए परिवार अहम भूमिका निभाता है। परिवार हर किसी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। परिवार की इसी भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। मैनों, परिवार की उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला किया। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया, हालांकि इस दिन की नींव 1989 में ही रख दी गई थी। बहनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। विश्व परिवार दिवस को मनाने की शुरुआत करने के पीछे की वजह दुनिया भर के लोगों को परिवार से जोड़े रखना और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाना है। भावनात्मक तौर पर परिवार एक दूसरे का सहारा देने और अकेलेपन को दूर करने का काम करता है। विश्व परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण है। ये विषय परिवारों पर बढ़ती असमानता के प्रभाव, बाल गरीबी को कम करने और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत निवेश पर केंद्रित है। मैंने खुशहाल और स्वस्थ

0: पारिवारिक माहौल बनाने के चार सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। साथ में भोजन करना, सक्रिय रहना, चर्चा करना और पति पत्नी के रूप में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। बहनों, परिवार सर्वोपरि है। स्वस्थ परिवार स्वस्थ समुदायों की नींव होते हैं। दिन हो या रात, चाहे धूप हो या बरसात, चाहे आए विपत्ति हजार, परिवार ही साथ देता है हर बार। हाथों की उंगलियों सा तकरार, मिल जाए तो ताकत अपार, खुशियों से भर जाता दिन हर बार, साथ मिल जाए जब पूरा परिवार। जी हाँ बहनों, तो अपने परिवार पर गर्व करें, समय दें और उसे व्यवस्थित रखें और एक दूसरे को एक दूसरे के प्यार का, सम्मान का और अहमियत का एहसास कराते रहें, कुछ इस तरह से।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे सुरेश वाडकर, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में फिल्म हम से ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। मैनो हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे सपने, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आते हैं तो वो कविता का रूप ले लेते हैं। कविताएं समाज का और हमारी आत्मा का दर्पण होती हैं। जब कोई कवि या कवयित्री कविताएं लिखता है तो उन कविताओं में समाज में घटित हो रही कई सारी घटनाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी परिकल्पनाएं और उसके सपने उस कविता को निखार देते हैं। और जब ये कविताएं हम आपको सुनवाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेती हैं। तो चलिए सुनते हैं नम्रता शुक्ला जी से उनके मनोभाव उनकी कविता के रूप में। क्रम है काव्य पाठ।
1: मैं नम्रता शुक्ला आप सबके सामने एक समसामायिक काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। और काव्य पाठ की शुरुआत माँ सरस्वती को एक छंद समर्पित करके करूँगी। सुनिएगा। देवी शारदा प्रणाम, चरणों में बारंबार शीश सादर सामने मैं आपके झुकाती हूँ। श्वेत पुष्प, श्वेत वर्ण, श्वेत स्वर्ण, स्वर्णमयी शब्द कोश स्वरों से सजाती हूँ। साधना विहीन नहीं, आत्मा मलिन नहीं, साधना विहीन नहीं, आत्मा मलिन नहीं, तन मन धन ध्यान।

हूँ। अब मैं आपको उस समसामायिक गीत से जोड़ती हूँ जिसके लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महाराज छत्रसाल की भूमि छतरपुर में उपस्थित हूँ और अपनी उपस्थिति महाराज छत्रसाल को एक गीत समर्पित करके करना चाहती हूँ। सुनिएगा। जिन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, जिन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, वे छत्र साले इस धरा पे सौर्य में लड़े, वे छत्र साले इस धरा पे सौर्य में लड़े, वे छत्र साले इस धरा पे सौर्य में लड़े। श्री किशोर जी की मुरलिया में जो जड़े, उनकी मुरली में जो हीरे जड़े हुए हैं उनसे जोड़कर ये पंक्तियां। श्री किशोर जी की मुरलिया में जो जड़े, वो अस्पाद चापों तले हीरे भू घड़े, वो अस्पाद चापों तले हीरे भू घड़े। कृपालु प्राण नाथ छत्र छाया के घने, कृपालु प्राण नाथ छत्र छाया के घने, कौशल महान सूर्य वीर संगठक बने, कौशल महान सूर्य वीर संगठक बने। स्वाभिमानी राजा बुंदेले जू बड़े, स्वाभिमानी राजा बुंदेले जू बड़े, वसुंधरा पे छत्र साल सौर मैं लड़े, वसुंधरा पे छत्र साल सौर मैं लड़े, उन छत्रपति की धरा पे।

0: आज हम खड़े। आगे सुनिएगा माता पिता के लिए। चंपत पिता कुछत्रपति लाल मिला था, चंपत पिता कुछत्रपति लाल मिला था, लाड़ कुंवर मात को गोपाल मिला था, लाड़ कुंवर मात को गोपाल मिला था। सुत सेनापति छत्रपति वीर जन्मे थे, सुत सेनापति छत्रपति वीर जन्मे थे। मुगल बिगुल काल को अकाल मिला था, मुगल बिगुल काल को अकाल मिला था। लिधौरा जन्म भूमि है गाथा ध्वज गड़े, लिधौरा जन्म भूमि पे गाथा ध्वज गड़े। वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, आज हम खड़े। मध्य खंड वीर सुत प्रतापी राजे थे, मध्य खंड वीर सुत प्रतापी राजे थे। औरंगजेओ मुगलिया एक ख्वाजे थे, औरंगजेओ मुगलिया एक ख्वाजे थे। बुंदेल खंड खंड के प्रचंड तीर से, बुंदेल खंड खंड के प्रचंड तीर से छत्रपति जय विजय के गाजे बाजे थे, छत्रपति जय विजय के गाजे बाजे थे। मुगलियों के दाव पैंच उल्टे मुंह पड़े, मुगलियों के दाव पैंच उल्टे मुंह पड़े। वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े, वसुंधरा पे छत्रशाल शौर्य मय लड़े। उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। दहाड़े छत्रशाल रंग बाज उड़ गए, दहाड़े छत्रशाल रंग बाज उड़ गए। प्रचंड युद्ध ठाना शत्रु दल उखड़ गए, प्रचंड युद्ध ठाना शत्रु दल उखड़ गए। सौर्य सौर्य मोर से मुगल मुंड धड़ गए, सौर्य सौर्य मोर से मुगल मुंड धड़ गए। मुह मोड़ रन छोड़ मुगल दिल्ली मुड़ गए, मुह मोड़ रन छोड़ मुगल दिल्ली मुड़ गए। सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन से मड़े, सत सत प्रणाम कोटि कोटि नमन से मड़े। वसुंधरा पे छत्रशाल सौर्य मय लड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े, उन छत्रपति की धरा पे आज हम खड़े। धन्यवाद। झूठ फरमाते मिले। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ नम्रता शुक्ला से। बहनों, हर लड़की के दो परिवार दो घर होते हैं, एक मायका जहाँ माँ का प्यार पिता का दुलार होता है, और एक ससुराल जहाँ सास ससुर का लाड़ होता है। इन दो परिवारों के बीच पूरे जीवन भर संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है हर महिला के लिए। मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाना भी एक कला है, जिसमें समझदारी, धैर्य और सम्मान की जरूरत होती है। आप इन तरीकों से एक खुशहाल संतुलन बना सकती हैं। ससुराल के मूल्य और जीवन शैली मायके से अलग हो सकती है, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपेक्षाएं कम रखें। सास ससुर का आदर करें और घर के कामों में मदद करने की पेशकश करें। अगर ससुराल वाले बात करें तो ध्यान से सुने और अपनी धारणाओं को बीच में न लाएं। त्योहारों और छुट्टियों में बारी बारी से दोनों परिवारों के साथ, यानी ससुराल और मायके में समय बिताएं और दोनों ही परिवारों को अपना समझें और प्यार दें। घर के भीतर आप अपना एक निजी स्थान बनाएं और ससुराल वालों के निजी मामलों में दखल को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। पति को सेतु बनाएं, पति को एक समझदार साथी के रूप में रखें जो दोनों घरों का सम्मान करे। जब संभव हो ससुराल में सीधे बात करें, अपना पक्ष रखें, ना कि पति के माध्यम से। मायके और ससुराल की तुलना करने से बचें। अपने घर की बातों या कमियों की चर्चा मायके में ना करें। मायके या ससुराल से कोई भी मांग या बात आए तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, पति के साथ मिलकर विचार करें। अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रही हैं, तो अपने पति या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करें। बहनों, सीमाएं तय करें, ये समझें कि आप सभी को खुश नहीं रख सकती और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहें। ससुराल में सम्मान, काम में सहयोग और बातचीत को महत्व देकर आप मायके और ससुराल के बीच एक स्वस्थ और खुशहाल संतुलन बना सकती हैं। जिस तरीके से मायका आपका अपना घर है, उसी तरीके से ससुराल भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां आपका पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो सकता है यदि आप मायके और ससुराल के बीच तुलना ना करें। एक महिला एक बांध की तरह होती है जो अपने अंदर भावनाओं के गुबार को बांध लेती है, और ये भावनाएं यदि ससुराल से जुड़ जाएं तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है और आप ससुराल को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकती हैं, कुछ इस तरह से।

पैनो, अभी हम सुन रहे थे फिल्म दिल्ली 6 से रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और सुजाता मजूमदार की आवाज में ये सुरीला सा गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत दिया था एआर रहमान और रजत ढोलकिया ने। पैनो, गर्मियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा और हमारे शरीर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। गर्मियों में त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने के लिए अगर आप धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन जो SPF 30 या 50 है उसका प्रयोग जरूर करें। जेल बेस्ड क्लींजर से दिन में 2 बार सफाई करें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाना सबसे जरूरी है। बहनों, खूब सारा पानी पिएं, खीरा दही खाएं और धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को जरूर ढकें ताकि टैनिंग और घमौरियों से और मुहासों से बचा जा सके। बहनों, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिएं, जूस पिएं और नारियल पानी पिएं। साथ ही सुबह की सैर जरूर शामिल करें और योगा करें, जिससे आपकी जो त्वचा है उसमें खिंचाव रहेगा और यदि आप फेस योगा करती हैं तो आपके फेस पर एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार हल्के स्क्रब से डेड स्किन हटाएं, जिससे रोम छिद्र बंद नहीं होते। सूती और ढीले कपड़े पहने, खीरा और गुलाब जल का इस्तेमाल करें जिससे आपकी त्वचा को ठंडक मिले। गर्मियों में हल्का मेकअप करें या बिना मेकअप के रहें ताकि त्वचा सांस ले सके। दही और बेसन का पैक बनाकर लगाने से टैनिंग कम होती है। साथ ही एलोवेरा जेल लगाएं और धूप से झुलसी त्वचा को ठीक करें। मैंने रात को अपने चेहरे को जरूर पानी से धोएं और मॉइस्चराइजर लगाकर सोएं। गर्मियों का मौसम अपनी तेज धूप, पसीने और धूल मिट्टी के साथ आता है, जो आपकी त्वचा की चमक छीन सकता है। अपनी स्किन को समर रेडी बनाने का मतलब है उसे हाइड्रेट रखना और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना। गर्मियों में अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे अंदर से आपकी स्किन रिकवर होगी। जिसमें आप अपनी डाइट में खीरा, तरबूज, हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूज और कई तरीके के जूस का उपयोग कर सकती हैं, जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देंगे। और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने से आपको बचना चाहिए और हमेशा ठंडे पानी से चेहरा धोते रहना चाहिए, जिससे आपके त्वचा के जो छिद्र हैं वो बंद ना हो पाए। अगर आपकी त्वचा पर एक्ने हैं या मुहासे हैं तो उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब जल और तुलसी वाला स्क्रब और ड्राई और सामान्य त्वचा के लिए नींबू, चंदन और बेसन, हल्दी और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्मी के सीजन में सूरज की किरणें 12 से 4 बजे के बीच बहुत सख्त होती हैं। इस समय आप बाहर निकलने से बचें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी आंखें धूप के चश्मे से कवर हों और आपके ओठ बाम के साथ सुरक्षित हों। हम अक्सर भूल जाते हैं कि आंखों के चारों ओर की त्वचा बहुत नाजुक होती है और जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर बहुत अधिक गर्मी आपकी आंखों को लग रही है तो उन्हें स्वच्छ और ठंडे पानी से धो लें। आलू के रस में रुई को भिगोकर आंखों पर लगाएं। यदि समस्या बनी रहती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। स्वच्छता गर्मी से निपटने में काफी मदद करती है। दिन में 2 बार स्नान करने से न केवल आपकी त्वचा ताजा रहती है बल्कि गर्मियों में सुस्ती का मुकाबला करने में भी मददगार है। तो ये तो थी संक्षिप्त सी जानकारी। और अब बहनों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। तो बस चलते चलते आपके साथ 2 लाइनें। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी बहन मंजू व्यास को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: भारतीय सेना
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये बद

छक्की लाल प्रजापति व साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुशाग्र सक्सेना की गाई गजलें।

0: कुशाग्र सक्सेना की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
7: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
8: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
7: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
7: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
10: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
7: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
7: सफर में
6: आपके साथ।
7: आकाश

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मजरूह का लिखा और राजेश रोशन का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, इसलिए बैठक अहम मानी जा रही है। यूएई के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपने देश में बेहद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में होगी। श्री मंत्री ने कहा कि एनटीए में बड़े सुधार जरूरी है ताकि भविष्य में धांधली न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रह सके।
1: नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। उनका कहना था कि नई व्यवस्था में विकासशील देशों और उभरते बाजारों की बात सुनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ

0: पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है और उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। श्री यादव ने बताया कि सरकार सभी वर्गों और समाजों से सुझाव लेकर आगे की राह तय करेगी। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने चोइथराम एमवाय और अमलतास अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने के निर्देश दिए। कल सुबह हुए इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिनों तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आगर मालवा में श्रम विभाग द्वारा कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम योगी मानधन योजना के पंजीयन किए गए। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और बिंदु का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर की। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा

0: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर

0: महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युतसरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म साजन से। आवाज अनुराधा पौडवाल की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म साजन का ये गीत।

बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फूल और कांटे का अलका याग्निक और कुमार सानू का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में फिल्म रोजा का गीत। बोल पी के मिश्रा के हैं और संगीत है ए आर रहमान का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश।

पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप राजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनना चाहते हैं फिल्म मन का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गाया हुआ गीत। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। लीजिए सुनिए।

ग्राम फ्रांसीसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू बबीता, सुभाष योगी बब्बू डब्बू, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म कसूर का ये गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, बोल समीर के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग पर, व्यापार पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और असरदार वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए सभी साझेदारों के साथ काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बदलाव की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए समिति का गठन हो चुका है, उसकी पहली बैठक भी संपन्न हो गई है। प्रदेश में आज से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल के समन्वय भवन में इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:00। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा सुनिएगा शाम 7:21 पर। आज इसमें आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार होंगे देवेंद्र खुराना। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:30 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का राग जयंत मल्हार में सितार वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे अपने विविध कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जा

0: यात्रा पूरी करने के बाद अबू धाबी से रवाना हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि मैंने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के परिणाम हमारी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जब दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी तब भारत अलग खड़ा रहा। श्री रिजिजू ने कहा कि कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से लेकर करीब 100% तक महंगा हुआ है, लेकिन भारत ने पेट्रोल में सिर्फ 3.2% और डीजल में 3.4% की बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज धार जिले की भूशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष सरकार से मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है। कोर्ट ने परिसर के प्रशासन और प्रबंधन का जिम्मा ASI और केंद्र सरकार को दिया है। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में मजबूत प्रदर्शन, व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

अयम् निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम्। अर्थात ये मेरा है ये उसका है, ऐसी सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार के समान होती है। साथियों इसी विचार के साथ स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका मित्र पीयूष चतुर्वेदी। तो साथियों स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों परिवार हमारी पहली पाठशाला है जहाँ प्रेम त्याग और संस्कार सीखने को मिलते हैं। परिवार ही समाज के साथ हमें जोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, बुरे से बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। इंसान को जीवन के हर मोड़ पर परिवार की जरूरत होती है। इसीलिए साथियों हमारे आज के कार्यक्रम की पहली चर्चा परिवार से जुड़ी हुई है जिसका विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी विश्व परिवार दिवस। साथियों प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परिवारों की सामाजिक संरचना और मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, परिवारों से जुड़े सामाजिक आर्थिक और जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर विमर्श को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1993 में एक प्रस्ताव पारित कर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। पहली बार ये दिवस सन 1994 में मनाया गया जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष भी था। विश्व परिवार

0: दिवस प्रत्येक वर्ष एक थीम के अंतर्गत मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए विश्व परिवार दिवस की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। साथियों, सिर्फ एक दिन किसी दिवस को मनाने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हम देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम भूलते जा रहे हैं कि जीवन का असली सुख कहाँ है। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन ने परिवार का आपसी संवाद छीन लिया है। साथ बैठकर खाना खाने और ठहाका लगाने की जगह सोशल मीडिया के स्टेटस ने ले ली है। मगर तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ही ना हो जाए, रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन का कोई विकल्प नहीं है। परिवार वो दीपक है जो तूफानों में भी रोशनी देता है, बशर्ते हम उसे लगातार तेल और बाती देते रहें। तो चलिए साथियों, आज से ही अपने परिवार को प्राथमिकता दें और इस दुनिया को सच्चे अर्थों में परिवार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा जिसका विषय था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये मनमोहक गीत।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म से, जिसमें आवाज थी जावेद बशीर की, गीतकार थे रजत अरोरा और संगीत दिया था प्रीतम ने। तो साथियों, कार्यक्रम में आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। ये विषय है पेट्रोकेमिकल उत्पाद। पेट्रोकेमिकल दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेट्रो यानी पत्थर का तेल या क्रूड ऑयल, और केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ। सीधी सी बात है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग से जो भी रासायनिक चीज बनाई जाती है वो सब पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी से कुर्सी मेज बनाता है, वैसे ही वैज्ञानिक तेल के अणुओं को तोड़ मरोड़ कर हमारे काम की हजारों चीजें बना लेते हैं। इसे यूं समझिए, रिफाइनरी में जब कच्चे तेल को बहुत गर्म किया जाता है तो उसके बड़े बड़े अणु टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रैकिंग कहते हैं। इन्हीं को जोड़कर हमें प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं, तो कभी पॉलिएस्टर की कमीज, कभी मजबूत टायर और कभी खुशबूदार साबुन। अब जरा गौर कीजिए, सुबह से रात तक हम कितनी पेट्रोकेमिकल चीजों को छूते हैं। टूथब्रश, पानी की बाल्टी, फ्रिज में रखा डिब्बा, स्कूल बैग, पेन, खिलौने और मोबाइल फोन का कवर, ये सब पेट्रोकेमिकल्स का ही कमाल है। साथियों, केवल प्लास्टिक ही नहीं, खेतों में डाले जाने वाली यूरिया खाद, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कुछ विटामिन तक इस परिवार के सदस्य हैं। सच पूछिए तो आज की जिंदगी में ऐसा शायद ही कोई पल हो जब हम पेट्रोकेमिकल उत्पादों से दूर हों। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जितनी आसानी से ये हमें मिल जाते हैं, उतनी ही मुश्किल से ये गलते हैं। पानी की एक बोतल को जमीन में पूरी तरह से खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे गाँव, शहर, नदियाँ और समंदर प्लास्टिक के कचरे से भरते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम तीन आदतें पक्की कर लें, कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल जरूर करें। थैला लेकर के बाजार जाएं, प्लास्टिक की बोतलों की जगह धातु की बोतलों को चुनें और कचरे को गीला सूखा अलग करके ही फेंकें। ये छोटे बदलाव हमारी धरती को बड़ी राहत देंगे। तो साथियों, ये तो हमने आपसे की एक छोटी सी चर्चा पेट्रोकेमिकल विषय पर। और साथियों, अब आपको सुनवा देते हैं वार्ता जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जिसमें वार्ताकार होंगी प्रियांशी अवस्थी।
1: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह विषय है जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर उसका प्रभाव। यह विषय हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। हम जहाँ रहते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन खाते हैं, उन सभी पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम ध्यान से अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि आज शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, सड़कें छोटी पड़ती जा रही हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यह सब कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। जनसंख्या किसी भी देश की शक्ति मानी जाती है। अधिक जनसंख्या का अर्थ अधिक मानव संसाधन भी होता है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ जाएं, तब वही जनसंख्या समस्या बन जाती है। आज भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। हर वर्ष करोड़ों लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण भूमि, जल, वन, ऊर्जा और रोजगार जैसे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। पहले के समय में लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी। गाँव में प्राकृतिक जीवन अधिक था, पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ती गईं। अधिक घरों की आवश्यकता हुई, अधिक भोजन की आवश्यकता हुई और अधिक वाहनों और उद्योगों की जरूरत हुई। इन सब का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। सबसे पहले यदि हम वनों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हुई है। लोगों को रहने के लिए भूमि चाहिए, उद्योगों के लिए जमीन चाहिए, सड़कें

0: भवन बनाने के लिए स्थान चाहिए। इसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। पेड़ों केवल लकड़ी ही नहीं देते बल्कि वे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाने में सहायता करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जब जंगल कम होते हैं तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, कई जीव जंतु विलुप्त होने लगते हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ जाती है। आज हम सभी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे शब्द सुनते हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। इन समस्याओं के पीछे बढ़ती जनसंख्या और उससे होने वाला प्रदूषण एक बड़ा कारण है। जब अधिक वाहन सड़कों पर चलेंगे, अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी, अधिक बिजली की खपत होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में पड़ेंगी। यही गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। वायु प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बड़े शहरों में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल, धुआं और जहरीली गैसें वातावरण में फैल रही हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों का पड़ता है। दमा, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा चाहता है और परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। नदियों, तालाबों और झीलों का पानी प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्लास्टिक, कचरा और घरेलू गंदगी जल स्रोतों में मिल रही है। आज कई शहरों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। यदि समय रहते हमने जल संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी मिलना कठिन हो जाएगा। भूमि प्रदूषण भी बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। अधिक उत्पादन के लिए खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक और कचरे के ढेर शहरों और गांवों में दिखाई देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और भोजन की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती है और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जब संसाधन सीमित हों और जनसंख्या अधिक हो तब समस्याएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार भी इसी का परिणाम है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर आते हैं जिससे शहरों में अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। यदि हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो पाएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हर छोटी चीज प्लास्टिक में पैक होकर आती है। यह प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचकर जल जीवों को भी हानि पहुंचाता है। यह समस्या भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती उपभोग प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। आज तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है। नई नई मशीनें, उद्योग और सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लेकिन यदि विकास पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ कर किया जाए तो वह लंबे समय तक लाभकारी नहीं हो सकता। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। इसे ही सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन सुरक्षित रहें। सरकार भी समय समय पर परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाती है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, पानी बचाए, बिजली की बचत करे और प्लास्टिक का कम उपयोग करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिणाम ला सकती हैं, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली बंद करना, वर्षा जल संचयन करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कचरे को इधर उधर ना फेंकना। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का स्थान दिया गया है, नदियों को देवी माना गया, पेड़ों की पूजा की गई और पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखा गया। इसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि जंगल केवल किताबों में दिखाई दे, यदि मौसम पूरी तरह असंतुलित हो जाए तो मानव जीवन कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी से जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित और संतुलित अवश्य किया जा सकता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, जिसमें वार्ताकार थी प्रियांशी अवस्थी। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि अल नीनो आ रहा है तो इस बार सूखा पड़ेगा, या इस बार ला नीना है तो झमाझम बारिश होगी। मगर क्या आपको पता है कि अल नीनो और ला नीना आखिर होता क्या है? तो चलिए साथियों, आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि आखिर अल नीनो और ला नीना होता क्या है। साथियों, अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान और हवा के पैटर्न में होने वाले दो विपरीत बदलाव हैं, जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये अल नीनो सदन ऑसिलेशन चक्र का हिस्सा है। अल नीनो होने का कारण मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही पानी का सामान्य से अधिक गर्म होना है, जिसके प्रभाव से ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका की ओर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति बनती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बनती है। साथियों, अल नीनो को अक्सर गर्म अवस्था या स्पेनिश में क्राइस्ट चाइल्ड कहा जाता है। वहीं साथियों, ला नीना होने का कारण मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही पानी का सामान्य से अधिक ठंडा होना है, जिसके प्रभाव से व्यापारिक हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, जो गर्म पानी को पश्चिम यानी कि एशिया की ओर धकेलती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में भारी मानसून वर्षा होती है, वहीं पेरू और इक्वाडोर में सामान्य से कम वर्षा होती है, जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। ला नीना को ठंडी अवस्था एंटी अल नीनो या स्पेनिश में अल वीजो द ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अल नीनो की घटना आमतौर पर एक साल से अधिक समय तक नहीं रहती है, जबकि इसके विपरीत ला नीना की घटना एक साल से तीन साल तक बनी रह सकती है। इस तरह से साथियों, अल नीनो में समुद्री पानी गर्म होता है और भारत में सूखे का कारण बनता है, जबकि ला नीना में पानी ठंडा होता है, जिससे भारत में अच्छी बारिश होती है। तो साथियों, ये तो हमने आपसे बात की अल नीनो और ला नीना विषय पर, और अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं ये प्यारा सा

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आशिकी 2 फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज थी पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार थे जीत गांगुली। तो साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दे देते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट। पदों की संख्या है 1200। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपने मित्र पीयूष चतुर्वेदी को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। समय है एक अंतराल का।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
3: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिलाषा से, मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत है आर डी बर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 36 घंटे से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत है सपन चक्रवर्ती का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश और अलका याग्निक की आवाज में। गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है अफसर।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
3: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: अंतराल पूर्ण हुआ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अबुधाबी से रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश में 75 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूँ की खरीदी रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में आज दो और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहाँ खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल हो सकेंगे। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। भोपाल के उद्धवदास मेहता सेंट्रल सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने RG कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड

0: के कुंडला लाउद विदिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

शाम का वक्त हुआ है 6:10 आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर जुड़ चुके हैं आप उस महफिल में जिसका नाम है सदाबहार गीत। और इस महफिल में आपके साथ मैं रहूंगा संजीव अग्निहोत्री।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000-तमे वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000-तम वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथींद्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च षड् दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानं एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000-तमवर्षस्य ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतॄणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हित संबद्ध विषयेषु च मतानां आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000+ वर्षे श्री अराघची वर्यस्य सहभागिताया

0: अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य क्यूबा देशस्य विदेश मंत्रिणा ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिक अंतर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकर अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग संबद्धां चर्चां उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मंत्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,2000 नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य तृतीय दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपर लीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां मातापितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिकमाध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: आर फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स डीपली माइंडफुल ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज। फॉलोइंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 3rd May, वी वर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट नो जेन्यून कैंडिडेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ फेयर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द एजुकेशन माफिया।
1: एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: शिक्षा मंत्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुं उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामि वर्षात् संगणकाधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी।
2: The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system.
1: अगले साल से NEET की परीक्षा computer-based टेस्ट से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोध रूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किम राज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः गंगटोक नगरे सिक्किम राज्यस्य राज्य दिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साई राजरंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुष युगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे. चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची, नमस्कार, गुड इवनिंग अर्जुन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड लोअर. सेंसेक्स ड्रॉप्स 161 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,650. इंडिया एंड द यूएई एग्री टू लॉन्च न्यू इनिशिएटिव्स टू प्रमोट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट. सेंसेक्स लगभग 161 अंक फिसला. निफ्टी 23,650 के नीचे बंद हुआ. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर सहमत हुए और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े.

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्वीन से, अमित त्रिवेदी की आवाज में। गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है प्रीतम का और फिल्म का नाम है ये जवानी है।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फितुर से, अमित त्रिवेदी की आवाज में। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है विशाल शेखर का और फिल्म का नाम है वॉर।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
3: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती

0: चार दूर।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: देश के कोने कोने तक

0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको जानकारी दे दें आज व कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश व आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सबसे पहले आज आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शाम 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा। अब एक नजर कल आकाशवाणी क्षमा कीजिए अब एक नजर आज आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम खेल जगत आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉली सक्सेना। रात

9:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकता है रात 10 बजे। रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन राग जयंत मल्हार में। अब एक नजर कल आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम लोक संगीत सुना जा सकता है 9:15 पर। कार्यक्रम अनमोल धरा का समय होगा 9:30 पर। 9:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी सुना जा सकता है सुबह 10:00। 10:05 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। आकाशवाणी भोपाल से ही शाम 7:21 पर आप सुन सकते हैं ग्राम सभा। अब एक नजर कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने सुनिएगा 11:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा 12:00। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की तीसरी कड़ी सुनी जा सकती है 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनिएगा 1:00। 1:30 पर समय होगा लोक संगीत का। 1:45 पर सुना जा सकता है सुगम संगीत। ये तीनों कार्यक्रम हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुति होंगे। 2:00 सुनिएगा फिल्म संगीत आपकी फरमाइश सुना जा सकता है 2:30 पर। युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी सुनिएगा शाम 5:02 पर। सुनिएगा फिल्म संगीत। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग 3 सुनिएगा शाम 6:00। इसमें आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता यादें अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से अमिता त्रिवेदी की बातचीत शाम 6:00। 6:30 समय होगा फिल्म संगीत का। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिएगा 7:45 पर। सुर्खियों में सुना जा सकता है रात 8:00। 8:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। दिल्ली से सुनिएगा कार्यक्रम चित्र भारती रात 9:30। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10:00 आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है।

0: डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण कार्यों का किया निरीक्षण, बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी लिया जायजा। और नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, अगले साल से सीबीटी मोड में आयोजित करने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे पर आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को सुरक्षा घेरा दिया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी। एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व और गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने के समझौते भी हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धार की भोजशाला को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। पूरी जानकारी दे रहे इंदौर से हमारे संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने धार भोजशाला परिसर मामले में कहा कि संरचना का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद की वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से सिद्ध होता है कि यह स्थल संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहां देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। न्यायालय ने अपने इस फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला परिसर के 98 दिनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसले को भी आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1958 एक्ट के तहत इस धरोहर की संपत्ति का समग्र प्रशासन और प्रबंधन ASI के हाथ में ही रहेगा। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धार की भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि भोजशाला का निर्माण महान राजा भोज ने अपने कार्यकाल में किया था और ये सर्वविदित सत्य है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं धार जिला प्रशासन द्वारा भी भोजशाला स्मारक को लेकर आए निर्णय को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ADP PO भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जबलपुर में एक साथ करने का फैसला किया है। इंदौर और ग्वालियर की पीठों में लंबित याचिकाएं अब जबलपुर ट्रांसफर होंगी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन में 40 साल की उम्र सीमा को चुनौती दी है। अगली सुनवाई जून के आखिरी हफ्ते में होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल 20 से 100% तक महंगा हुआ है, तब भारत ने सिर्फ 3.2 और 3.4% की मामूली बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने हफ्तों तक घाटा सहकर आम लोगों को महंगाई से बचाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में रामघाट पहुंचकर सड़क चौड़ीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य उज्जैन को लंबे समय तक फायदा पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड जवानों के बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। 250 जवानों को डीप डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू समेत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
2: हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति भी होती।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी 2026

परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले साल से यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी। मंत्री ने कहा कि NTA में बड़े सुधार जरूरी हैं ताकि भविष्य में धांधली न हो। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी मेधावी छात्र शिक्षा माफिया की साजिश की वजह से अपने हक से वंचित रहे। प्रदेश में 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। बंपर पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस सीजन में रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आज 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही यहां खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 हो गई है। ये दोनों फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से एक हैं। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर की थी। उन्हें खुद नामीबिया से लाए गए पहले 8 चीतों को छोड़ा था। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल में होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में होंगी। दूर दराज से आने वाले अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेशियां भी अब ऑनलाइन ही होंगी। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में भोपाल मुद्रा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्रदर्शनी है। 17 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लोग दुर्लभ और प्राचीन सिक्के देख सकते हैं। उज्जैन जिले के नलखेड़ा गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिकिता शर्मा ने 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने IIT मुंबई की टीम से 5 दिन की विशेष ट्रेनिंग लेकर ये काम शुरू किया। निकिता रोज घर घर जाकर माताओं को सही स्तनपान और पोषण के बारे में समझाती थी। उनके इस काम को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने उन्हें उज्जैन जिले की पहली मास्टर ट्रेनर बनाया है। भोपाल के उधदास मेहता सेंटर में आज से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 हॉकी सीरीज शुरू हो गई है। ये सीरीज 20 मई तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गो के मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरी तरफ IPL में कुछ ही देर बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुना कलेक्टर ने प्रतिमाह आयोजित होने वाले युवा संगम कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना की समीक्षा की। शिवपुरी में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी मानसून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब में SDRF और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर जिले में ई टोकन से उर्वरक न देने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। अब तक 3,81,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन वे बारे हमारे सभी भैया बहनन को निधि बहन की राम राम। भैया आज हम अपने चौपाल कार्यक्रम में चर्चा करें हैं कौशल भारत कुशल भारत। साथ ही भैया हम चर्चा करें हैं बायोगैस एक लाभ अनेक। इसके साथ साथ भैया हम एक और चर्चा करें हैं गर्मियों में पशुधन की उचित देखभाल। तो भैया सबसे पहले हम बात करते थे बायोगैस एक लाभ अनेक। भैया बायोगैस वास्तव में एक लाभ अनेक वाली अवधारणा है। ई गोबर रसोई के कचरे और कृषि अपशिष्ट जैसे जैविक पदार्थों से बनवे वाली एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। भैया बायोगैस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प है जो पशुओं के गोबर और गीले कचरे से ऊर्जा पैदा करत है जिसे भैया पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता के अनेक लाभ मिलत हैं। बायोगैस को उपयोग खाना पकावे और बिजली उत्पादन में करो जात है। इसे भैया हर साल हजारों रुपए की ईंधन की बचत होत है। बायोगैस संयंत्र से निकलवे वारो अपशिष्ट एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद जैसे रासायनिक खाद पर खर्च 30-40% तक कम हो जात है। इसे खाना बना समय धुआं ना ही होत है जिसे भैया महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से राहत मिलत है। भैया बायोगैस एक लाभ अनेक की बात हम कर रहे हैं। ई में भैया बहुत ही ई के अच्छे उपयोग हैं। इसे हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलत हैं। बायोगैस अपनावे से का होते भैया कि हमको धुआं से राहत मिलत है और हम एक खाना पकावे में बीमारियों से दूर रहे थे। तो भैया ये तो बात भई बायोगैस एक लाभ अनेक की। इसके बाद भैया हम बात करते हैं कौशल भारत कुशल भारत के बारे में। भैया कौशल भारत कुशल भारत को स्किल इंडिया के नाम से भी जानो जाते हैं। ई को आधिकारिक नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में शुरू हुई थी। ई योजना को मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को ऐसे काम करवे के लिए कौशल सीखवे या कहें औद्योगिक प्रशिक्षण देवे को है जी में भैया विश्वविद्यालय की डिग्री के बिना भी मिनखों रोजगार मिल सके। देखो जाए भैया तो देश में करोड़ों बेरोजगार हैं पर भैया उद्योग में फिर भी कुशल कर्मचारियों की कमी है। मेक इन इंडिया के तहत विदेशी निवेशक भारत में उद्योग स्थापित करनो चाहत हैं बिनखों भी कुशल वर्कर की ज़रूरत पड़त है। तो यही कमी को पूरा करवे के लिए ई योजना को उद्यम भव है। भैया योजना के अंतर्गत देश के कोनों कोनों में 2500 से भी अधिक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करी गई है और 10वीं 12वीं पास युवा और फिर कॉलेज स्कूल छोड़ चुके युवा भी कम समय में अल्पकालिक कोर्सेज के जरिए किसी न किसी हुनर को प्रशिक्षण पा सकते हैं। बहुत सारे हुनर ई योजना के अंतर्गत सिखाए जाते हैं जैसे कृषि संबंधित कौशल सिलाई कढ़ाई गृह सज्जा कार होटल के लिए खाना पकानो जैसे छोटे छोटे कौशल जी में युवा अपनी आजीविका कमा सकते हैं। ई योजना कछु हद तक

छात्र को डिजिटल स्किल भी प्रदान करते हैं। ये योजना को उद्देश्य है कि भारतीय युवाओं के कौशल विकास के लिए अवसर स्थान और इसको बनाना है एवं बिन क्षेत्रन में जिते कई सालों से भैया विकास ना ही बहु है उनको अधिक विकसित करना है। साथ ही भैया कौशल विकास के लिए नए क्षेत्रन की पहचान करना है। ये मुहिम के तहत भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करवे को लक्ष्य है जिसे भैया बिनको रोजगार प्राप्त हो सके। तो भैया इस तरह से ई कौशल भारत कुशल भारत योजना कार्य करत है। भैया अब हम बात करते हैं गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल। हाँ भैया, पशुपालक व्यवसाय से जुड़े भए हमारे किसान भैया उद्यमी को ये बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि गर्मी के इस मौसम में अपने पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी विशेष बातन को ध्यान रखना चाहिए। भैया एक सफल पशुपालक हो मौसम में होबे वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने पशुओं को प्रबंधन करना चाहिए जिससे इनके उत्पादन पर कोनो विपरीत प्रभाव ना ही पड़े। काहे कि भैया गर्मी के ये मौसम में पशुओं के बीमार होवे की संभावना बढ़ जाते हैं। गर्म हवाओं एवं तापमान अधिक होवे पर पशुओं को लू लगवे को खतरा बनो रहे थे। यही लाने भैया ये मौसम में पशुपालकों को विशेष ध्यान देवे की आवश्यकता होती है क्योंकि बेहद गर्म और मौसम में जब वातावरण को तापमान 42 से 48 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो पशु दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। ये दबाव की स्थिति को पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टो प्रभाव पड़ता है। गर्मी में पशुपालन कर समय भैया नवजात पशुओं की देखभाल में अपनाई गई तनिक सी भी असावधानी बिनके भविष्य की शारीरिक वृद्धि स्वास्थ्य रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकत है। तो बिनको भैया सीधे तेज धूप और लू से बचावे के लिए बिनके आवास के सामने की ओर खस या जूट के बोरे को पर्दा लटका देना चाहिए। अपने पशुओं को 24 घंटे साफ और ठंडो पानी उपलब्ध कराना है। पानी की टंकी को छाया में रखना है और पाइपलाइन को जमीन के अंदर से गुजारें ताकि भैया पानी गर्म ना ही होए। पशुओं को गर्मियों में कम मात्रा में बार बार चारा देना है। इनको रसीला चारा हरा चारा जैसे मक्का बाजरा या ज्वार को चारा खिलाना है। आहार में भैया नमक और खनिज लवण की मात्रा बढ़ा देना है जो गर्मी से लड़वे में मदद करत है। तो भैया एक अच्छे उपायन को अपना कर हमारे पशुपालक भैया अपने पशुओं को गर्मी के मौसम में स्वस्थ और उत्पादक बनाए रख सकते हैं। तो भैया ये तो बात भई गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल की। तो भैया अब अपनी चर्चा को तनिक विराम देते हैं और सुनत हैं जो नौनो सोगी और जाएगा रहे हैं बाबूलाल राजपूत।

रहे हटे जो लोगी और जाएगा रहे हटे बाबूलाल राजपूत। भैया लोगी सुनवे से पहरे हम चर्चा कर रहे हटे बायोगैस एक लाभ अनेक की ई विषय में और जानकारी देत भय। हम बात करत हैं भैया बायोगैस जैविक कचरे को कचरा भराव क्षेत्र में जावे से रोकत है जी से भैया मीथेन गैस का उत्सर्जित होत है और हवा व पानी को प्रदूषण कम होते हैं।

0: ग्रामीण क्षेत्र में बिजली और ईंधन के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। ई पशुओं के गोबर और घर के गीले कचरे को निपटान करवे को सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि भैया ई में गोबर को खुले में छोड़वे की बजाय संयंत्र में उपयोग करवे से मक्खी मच्छर नहीं पनपत हैं और बीमारियां कम होते हैं। ई बायोगैस पेड़ों को कटवे से बचाते हैं, क्योंकि भैया लकड़ी की ज़रूरत कम हो जाते हैं, साथ ही ई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। ई में घर में मौजूद पशुओं के गोबर से ही ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जिसे ईंधन के लिए बाहरी निर्भरता खत्म हो जाते हैं। ई बायोगैस संयंत्र धूप वाली जगह और जानवरों के रहवे की जगह के पास होना चाहिए। तो भैया ई तरह से ई बायोगैस संयंत्र काम करते हैं, तो ई को ज़रूर अपनाएं। भैया अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं एक भेंट वार्ता, जी को विषय है शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल। ई में वार्ताकार हैं डॉक्टर नीरज कुशवाहा और इनसे बता रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया सुनत हैं जो भेंट वार्ता।
1: किसान श्रोता नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जो बातचीत सुनवाने जा रहे हैं उस बातचीत से आप अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं, जो सरकार का लक्ष्य है कि किसान की दुगनी इनकम। विषय है शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल। ये मॉडल किस तरह से क्रियान्वित होंगे, कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं और कृषि वानिकी में इनका लाभ कैसे मिलेगा, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के वैज्ञानिक श्री नीरज कुमार कुशवाहा जी हैं। सर आपका सभी सुनने वालों के मध्य में स्वागत है। और जो विषय है शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल क्या है, थोड़ा सा विषय को बताएं, क्योंकि आम व्यक्ति को एकदम मॉडल सुनकर कुछ सैंपल लगते हैं कि वो हैं, या क्या कहना चाहते हैं आप?
2: कृषि वानिकी एक पद्धति है जिसमें कृषि के फसलों के साथ साथ हमें चारे के लिए, रेशे के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए या लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी के लिए या फल वृक्षों को साथ में लेते हैं, जिससे कि कृषक बंधुओं को एक अतिरिक्त आय मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में कृषक बंधु देते हैं उस कुछ प्रजातियों के वृक्षों में ये प्राकृतिक रूप से ये व्यवस्था है कि वो नाइट्रोजन को जमीन में स्थलीकृत कर देते हैं। इसके अलावा जो कटाव हो रहा है हमारी मिट्टी का उसको भी रोकते हैं, और जो टेम्परेचर तापमान जो जमीन का गर्मियों के समय में बढ़ जाता है या सर्दियों के समय में जब पाले की समस्या आती है उसको भी उसके रोकथाम के लिए। तो मॉडल्स का मतलब है कि किसान की ज़रूरत के आधार पर हम ऐसे मॉडल या इस प्रकार की पद्धति को वहाँ पर अपनाते हैं, लगाते हैं, जिससे कि उसको उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हों और उससे अतिरिक्त आय उसको उपलब्ध हो सके।
1: कुशवाहा जी, जैसे कोई किसान हमारा कृषि का काम कर रहा है, उसने रबी है तो गेहूं चना लगाया है, खरीफ है तो अन्य फसलें लगाई है, तो ये तो एक इस आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि रबी और खरीफ दोनों में समानांतर रूप से काम करेगा, तो कृषि अपनी जगह पे चलती रहेगी और ये अलग जगह पर यानी कि खेत के किनारे या किसी दूसरे हिस्से में जहाँ आप अभी बताएंगे वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं, कुछ इसी तरह की बात है?
2: जी नहीं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना चाहूँगा। इसमें देखिए तीन प्रकार से वृक्षारोपण किया जा सकता है। एक होता है कि जैसे मेड़ हमारी खाली पड़ी हुई है, हमको उनका उपयोग करना है, तो हम जो वृक्षारोपण ले रहे हैं उनको मेड़ों पर लेना है तो मेड़ों से हमको आय होगी। इसके अलावा जो यदि हम आपकी खेती करना चाहते हैं वर्ष पर्यंत जो भी आप फसल लेना चाह रहे हैं, तो उसमें गैप देते हुए मतलब एक अनुपात में जो उस वृक्ष को चाहिए उतनी स्पेस देते हुए जिसके बीच में हमारी फसलें भी हो सकें वर्ष पर्यंत और वृक्ष खड़ा रहे, क्योंकि वृक्ष जो है वो बहुवर्षीय होता है
1: जी,
2: तो वो हमेशा लगा रहेगा। हमारी जो फसलें होती हैं वो मौसम की होती हैं, जैसे खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, तो वो हिसाब से कटती रहती हैं, उसमें जो हमारे कृषि के क्रियाकलाप हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन वृक्ष हमारे बहुवर्षीय होते हैं। एक होता है अगर आप डेंस प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब कि घना प्लांटेशन जिस

0: के बीच में छाया बहुत अधिक होगी तो उसमें कुछ खास किस्म की हम फसलें ही ले पाते हैं क्योंकि छाया अधिक होती है। ये तीन प्रकार से वृक्षारोपण हमको इसमें किया जाता है।
1: अब बताएं सर के मॉडल के तौर पर कौन कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिनसे लाभ होगा और किसान को अतिरिक्त आमदनी।
0: जी, किसान बंधुओं को सबसे पहले कृषि वानिकी पद्धति अपनाने के पहले एक D&D सर्वे कर लेना चाहिए। D&D सर्वे से मतलब है डायग्नोसिस डिजाइन कर लेना चाहिए, मतलब कि वो अपनी जरूरतों को जो उसको चाहिए इसके अलावा जो उसके संसाधन है इनको देखते हुए ही वृक्षारोपण कृषि वानिकी का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया क्योंकि वृक्ष जो है एक बहुवर्षीय फसल है या घटक है, तो यदि आपने एक बार वृक्षारोपण कर दिया तो अब आप उसको हटाएंगे तो उसमें आपकी मेहनत आपका पैसा आपका समय लगेगा। इसलिए इसमें वृक्ष की प्रजाति वृक्ष का चयन और अपनी जरूरतें और संसाधनों का आकलन कर लेना चाहिए।
1: कौन कौन से वृक्षों को शिवपुरी जिले में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए यानी कि प्रमुखता देनी चाहिए?
0: मैं घटक वाइज बताना चाहूंगा, यदि किसान भाई हमारे मेड़ों को अगर फेंसिंग के लिए परेशान है कि हम कैसे उसमें तार बारी लगाएं या चेन लिंक जाली लगाएं, मवेशियों का प्रकोप है जंगली जानवरों का प्रकोप है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपनी मेड़ों पर यदि बांस की कतार उसके बीच में करौंदा लगाएं, क्योंकि हमारे शिवपुरी जिले में 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा का रकबा टमाटर के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है और जिसके लिए ज्यादातर वो स्टैगिंग जो मेथड होती है जिसमें दूसरी तरफ दोनों तरफ आप बांस बल्ली का प्रयोग करके तार के सहारे से उसको खड़ा करते हैं टमाटर को, तो वो हर तीसरे वर्ष तक वो चौथे वर्ष तक वो बांस खराब हो जाता है। और जितना भी बांस हमारे शिवपुरी जिले में आ रहा है वो विभिन्न जिलों से आ रहा है, जैसे बालाघाट सिवनी सागर दमोह इन जिलों से आ रहा है, तो उतना उत्पादन बांस का हमारे शिवपुरी जिले में हो नहीं रहा है और जरूरत ज्यादा है। अगर कृषक भाई हमारे मेड़ों पर अपने खेत की मेड़ों पर बांस की कतार लगा लेते हैं बीच में करौंदा लगा देते हैं तो पांचवें वर्ष में वो हर वर्ष अपना बांस का उत्पादन ले सकते हैं, काटते जाएंगे उनको बांस बल्लियां प्राप्त होती जाएंगी
1: और बेचते भी जाएंगे।
0: जी हाँ, यदि जरूरत उनकी है तो वो भी पूरी हो जाएगी अगर वो टमाटर के उत्पादक हैं, तो यदि नहीं है तो वो अपने किसी किसान बंधु को जिले में कहीं भी बेच सकते हैं, जिसे दोनों तरफा फायदा होगा, आपकी बागड़ भी तैयार हो जाएगी, आपको एक अतिरिक्त आय भी मिल जाएगी और जो किसान बंधु टमाटर की खेती करता है उसको दूर से लाने में जो अतिरिक्त पैसा परिवहन में लगता है वो कम लगेगा, नहीं के बराबर लगेगा, हो सकता है वो आपके गाँव का ही।
1: और करौंदे से भी आपको इनकम बीच में?
0: जी, करौंदे से भी आपको मिलेगी। इसके अलावा निचले स्तर पे अगर आप पेरिनियल ग्रासेस घास लगा सके तो वो आपको चारे के लिए भी आपके मवेशियों को प्राप्त हो सकती है, जैसे कि हाइब्रिड नेपियर बाजरा लगा सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा मेड़ों पर आप अरहर भी बो सकते हैं, तो जिससे कि आपकी एक ऐसी सुंदर जीवित बागड़ जिसको लाइव फेंस कहते हैं वो तैयार हो जाएगी, तो मवेशियों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप खेत के बीच में वृक्षारोपण करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वर्ष पर्यंत उस पर खेती करता रहूं और वृक्षों से अगर आमदनी होती रहे, तो उसके लिए यदि आप फलदार वृक्ष का चयन करते हैं तो कृषि शिवपुरी के परिवेश में आप सहजन का वृक्षारोपण कर सकते हैं, कटहल का कर सकते हैं, आम सीताफल अनार आंवला नींबू बेर बेल ये सारे आप वृक्षारोपण यहाँ पर कर सकते हैं। बस विशेषतः आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो वृक्षारोपण की जो डिस्टेंस है पेड़ से पेड़ की दूरी हमको उत्तर से दक्षिण की ओर रखनी है और कतार से कतार की दूरी का ध्यान हमको पूरब से पश्चिम की ओर रखना है, जिससे कि जो प्रकाश है वो बराबर मात्रा में आपके फसलों को और साथ ही साथ वृक्षों को मिलता रहे और उनकी जो दूरी है जो आपका इम्प्लीमेंट है यानी आपके कल्टीवेटर है या सीड ड्रिल है या हैरो है जो भी आप उसमें उपयोग में लेते हैं उससे 2 या 3 फीट आपको ज्यादा रखनी है कतार से कतार के बीच और वृक्ष से वृक्ष के बीच, ताकि आप जो भी आपके कृषि क्रियाकलाप हैं वो निरंतर आप उसमें कर सकें और वृक्षों को हानि ना हो।
1: आपने एक उदाहरण ये दिया और एक बागड़ का दिया, तीसरा आपने बताया था कि आप सघन अगर वृक्षारोपण करना चाहें।
0: यदि आप सघन वृक्षारोपण करना चाहते हैं, अब वो फलदार वृक्ष के लिए भी हो सकता है जल लकड़ी के लिए भी हो सकता है, तो उसमें क्योंकि जो कैनोपी है छादन है जो वृक्ष का ऊपर की छाया यदि ज्यादा हो जाती है और वो 3-4 वर्ष में ज्यादा हो ही जाएगी, तो उसमें हम सिर्फ ऐसी फसलों का चयन कर पाएंगे जो कि जो छाया है उसको प्रिय हो, जैसे कि हमारी हल्दी है,

0: तक है, कुछ हद तक हमारी आलू है, तो ये हम वहाँ पर उनके बीच में ले सकते हैं।
1: और वो जो सघन वृक्षारोपण के वृक्ष होंगे वो कौन से होंगे?
0: वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आप अगर फलदार वृक्ष चाहें तो भी हो सकते हैं, और यदि आप वानिकी वृक्ष चाहें कि जैसे खमेर जो जल्दी वृद्धि करता है, सागौन भी आप ले सकते हैं, ये आप वहाँ पर शिवपुरी के दृष्टिकोण से आसानी से ले सकते हैं।
1: आपने अपनी बातचीत में बताया था कि हमें उन पेड़ों से फल भी मिलेंगे और लकड़ी भी मिलेगी, लकड़ी की बात पर वन विभाग का नियम आ जाता है कि आप पेड़ को काट नहीं सकते, तो इस तरह के कोई पेड़ में अलग अलग विभाजन किया गया है कि इन पेड़ों को काटा जा सकता है और इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता?
0: जी नहीं, भारत में 2014 में एक पॉलिसी आई थी, कृषि वानिकी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत यदि आप रजिस्ट्रेशन NDFO के यहाँ कर देते हैं कि मैंने इतने वृक्षों का इस प्रजाति का वृक्षारोपण किया है, तो आप उसको काटने के लिए फ्री हैं, और आपको उसको बस ये बताना होता है कि हमने वहाँ काट दिया है, और वो जो लकड़ी अगर आप अच्छी क्वालिटी की है जैसे सागौन है या खमेर है, तो उसका जो बिकने का या बेचने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है, आप उसको डायरेक्ट बाजार में नहीं बेच सकते हैं, वो आप डिपो में देंगे और डिपो के द्वारा वन विभाग वाले उसको बेचते हैं, उसका कुछ कमीशन या परसेंटेज वो लेते हैं और बाकी की रकम आपको दे दी जाती
1: है। यानी कि वो भी काटी जा सकती है, निश्चित प्रक्रिया की जाए, DFO क्या उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सके, तो फिर हम उस इमारती लकड़ी को काट सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं।
0: जी
1: कुशवाहा साहब, आपने एक तरह से तीन तरह के वृक्ष बताए शिवपुरी में मॉडल के तौर पर, एक तो बागड़ के लिए जिसमें खास तौर पर आपने बांस का जिक्र किया, बीच में करौंदे का जिक्र किया, फसल भी लेनी है और पौधे पेड़ भी लगाने हैं तो फिर आम अनार इस तरह के आपने संतरा लगाया जा सकता है, और सघन है, सघन में कोई भी वृक्ष लगाया जा सकता है, खासतौर पर सागवान है, आम है, नींबू है, इस तरह के लगाए जा सकते हैं। काटने की प्रक्रिया अलग अलग है कि सरकार के मतलब आपको वन विभाग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को आपको ये सूचना देनी है, फिर आप उसे काट सकते हैं। इसके अलावा परिवेश बहुत बदल रहा है, साइंटिस्ट खासतौर पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं और नए नए तरह के प्रयोग कर हर जगह पर हर चीज उत्पादन के लिए मदद कर रहे हैं, तो शिवपुरी जिले में जो वृक्ष आपने बताए हैं वो तो सार्वभौमिक हैं, सबको पता है, लेकिन अगर संतरा जिसका नाम शिवपुरी जिले में उतना नहीं है जो दूसरे इलाके की फसल है, तो इस तरह के पौधे भी क्या शिवपुरी में बढ़ाए जा सकते हैं, उनका लाभ लिया जा सकता है?
0: जी, संतरे को छोड़कर साइट्रस कुल के ज्यादातर पौधे या पेड़ हम या वृक्ष हम कृषि शिवपुरी दृष्टिकोण में ले सकते हैं, लेकिन संतरा क्या है, उसको थोड़े आर्द्रता की जरूरत होती है क्योंकि उसमें मिठास आने के लिए, और उसकी जगह आप किन्नो ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, लेकिन संतरे की रिकमेंडेशन अभी शिवपुरी जिले के लिए नहीं है क्योंकि उसमें वो मिठास नहीं हो पाती है यहाँ के परिवेश में, इसलिए मैं भी उसके लिए
1: अमरूद
0: बहुत अच्छा होता है, इवन ग्वालियर 27 एक प्रजाति है जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है, वो बहुत अच्छी स्वादिष्ट भी है और उसका फल का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि यदि अमरूद पर कोई जाना चाहे तो ग्वालियर 27 वैरायटी शिवपुरी जिले के लिए बहुत अच्छी।
1: तो नीरज कुमार कुशवाहा जी, आप हमारे किसानों के बीच में रहे और शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल, इस विषय पर एक अच्छी बातचीत हुई और एक अलग हटकर बातचीत हुई कि हम खेती की बहुत सारी बातें करते हैं, रबी की खरीफ की बात करते हैं, लेकिन वानिकी पर एक अलग तरह का प्रयोग कर हमारे किसान दुगनी इनकम कर सकते हैं, अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं, और इसमें एक बात और होगी, पेड़ों से जो पत्ते गिरेंगे वो खाद का भी काम करेंगे।
0: जी, ह्यूमस भी बढ़ेगा, उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, और आपके जो पत्ते वगैरह और निकल रहे हैं, यदि आप वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बना रहे हैं या नाडेप बना रहे हैं, तो उसमें जो आपको मटेरियल लगेगा वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्द हवाएं चलती हैं, तो अगर आपके पेड़ लगे हुए हैं मेड़ों के चारों ओर, तो सर्द हवाओं से भी बचता है, आपकी फसल को बचाता है, जिसको हम विंड ब्रेक कहते हैं, और यदि कतारें लगी हुई हैं मेड़ें अगर आपकी काफी चौड़ी हैं, 3-4 मीटर की मेड़ है, तो आप उसमें 2-3 कतार अगर वृक्षों की लगा देते हैं तो और भी अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, जिसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं,
1: यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो बहुत अच्छी और गर्भित बातचीत हुई, कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान जो उसको सुन रहे हैं वो अवश्य फायदा लेंगे और जरूरत पड़ने पर कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है सर।
0: जी बिल्कुल,
1: संपर्क किया जा सकता है ताकि आप अतिरिक्त आमदनी बढ़ा सकें। श्री नीरज कुमार कुशवाहा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: तो हमारे भैया सुन रहे थे जो भेंट वार्ता जी को विषय है तो शिवपुरी जिले के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल।

ही में वार्ताकार हते डॉक्टर नीरज कुशवा और इनसे बता रहे हते अपे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया हम आशा करे थे कि हमारे किसान भैया ने ई भेंट वार्ता को बहुत ध्यान से सुनो होगो और हमारे किसान भैया ई भेंट वार्ता में दी गई जानकारी को लाभ जरूर लेंगे। भैया आप सुना थे जो नौ नौ सौ गीत और जाएगा रही हैं उर्मिला पांडे।

या सुन रहे हैं जो नोनो सुगी और जाए गा रही हैं उर्मिला पांडे। भैया अब कार्यक्रम के अंत में कछु विशेष चर्चा कर ली थे। भैया विशेष चर्चा में हम बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातन के बारे में। भैया वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से 7 विशेष संकल्पों को पालन करने की अपील करी है। जैसे दफ्तर जावे की बजाय भैया जितेक संभव होए घर से काम करवे को प्राथमिकता देनो है। कम से कम 1 वर्ष तक सोने की अनावश्यक खरीदारी करवे से बचनो है। पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनो है। मेट्रो सार्वजनिक परिवहन कार पूल को उपयोग ना ही करनो है। खाद्यान्न तेल घर में इस्तेमाल होवे बारे ई तेल की खपत कम करनो है और समझदारी से इस्तेमाल करनो है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करनो है और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़नो है। माल ढुलाई के लिए सड़क के बजाय भैया रेलवे नेटवर्क को ज़्यादा इस्तेमाल करनो है। पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देनो है। तो भैया ई अपीलों को मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी संकटों से सुरक्षित रखना है। तो भैया ई तो बात हुई मोदी जी की 7 बातन की। भैया अब कार्यक्रम के अंत में आज के मौसम को हाल भी जान लेते हैं। भैया आज को अधिकतम तापमान रहो 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहो 27 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता यानी कि नमी रही 26% और हवा की गति रही भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ये तो बात भई आज के मौसम की। भैया अब अपने कार्यक्रम को समय समाप्त हो गया है तो अपनी निधि बहन को देवाज्ञा। राम राम, जय जवान जय।

0: Surgió Me.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, हम शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसके बारे में बताइए।
2: प्रधानमंत्री की अगर 5 देशों की यात्रा न होती तो भी प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलते, क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं।

0: और अगर इसकी मीटिंग हो रही है जो कि आगे कल्मिनेट होगी समिट में, शीर्ष सम्मेलन में सितंबर में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलें, उनकी बात, उनका रुख समझें और अपनी भारत की बात बताएं। तो ये जरूरी हो गया था, इसलिए जाने से पहले ही प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री ईरान से भी मिले, अराक्ची, उनसे ऐसी क्या बात हुई है? क्योंकि अभी युद्ध, अभी सीज फायर हुआ है और ब्लॉकेड भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहां पे तेल का आना जाना रहता है।
0: देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो होती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड या सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होता है क्रूड ऑयल, और वो हम 80% से ज्यादा मध्य पूर्व से लेते हैं, पश्चिम एशिया भी जिसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर हॉर्मूज के उस पे स्ट्रेट पे पाबंदी लग जाती है, आवागमन पे रोक लग जाती है, तो हमारी ऊर्जा जरूरतें इससे बड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है और प्रभावित हो रही, देख रही है आपने, तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे टैंकर्स, भारतीय ध्वजवाहक टैंकर्स जो अगर वहाँ से आ रहे हों तेल लेकर के या LNG लेकर के या और ऊर्जा के स्रोत लेकर के, तो उनको आने दी जाए, उनको लिए कोई परेशानी का सबब न हो। और इसलिए हम ईरान से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक दोस्त के तौर पे, एक मित्र राष्ट्र के तौर पे हमारे तेल वाहक टैंकर्स को आने देगा। और इसलिए आपने देखा कि शुरुआत में भी जब ये ईरान ने वहाँ पे माइन बिछाई, तो भी उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हाँ, हम कुछ भारतीय, कुछ देशों के टैंकर्स को आने देंगे, उसमें भारत भी था। बीच में अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, तब भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमारी यही कोशिश थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर कही होगी, और जब मिले होंगे तो ये बात भी कही होगी उन्होंने कि ईरान और US के बीच में जो संघर्ष है, उसका अंत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, छोटे देशों पे ज्यादा पड़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले हैं। रशिया के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, डिफेंस में, ऑयल इंपोर्ट्स में भी। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हम गैस भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है और हमारे प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
0: देखिए, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी तो पाकिस्तान, तो अमेरिका ने हमें सशर्त देने के लिए कहा था गेहूँ, लेकिन रूस ने उस वक्त कहा था कि आप हमें बस पोर्ट बताइए, किस पोर्ट पे और कितना चाहिए, प्राइस और सारे मॉडलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत पुराने संबंध, 70 साल 75 साल से ज्यादा के संबंध रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, LNG भी हमें अब चाहिए, क्योंकि हमारी मध्य पूर्व की सप्लाई कभी कभी डिसरप्ट हो जा रही है, तो इसलिए LNG भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे ख्याल से तो हम यही करेंगे कि अमेरिकी सैंक्शन या अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हम सप्लाई रूस से लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और जितनी हमें जरूरत है, और रूस हमें अनवरत सप्लाई देता है और वो भी हमें अच्छे टर्म्स पे सप्लाई देता है। तो इसलिए हमें रूस से, अभी जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं निकोबार की खाड़ी में, जब तक हमारे ऑयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती, तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
1: प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं, वियरा। ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
0: देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है। 5 जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना, तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि ब्राजील ही, देखिए, जब डीडॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है, हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे, और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशंस भी हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी, इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ

0: External Affairs, Sudhakar Dalela. Press statement.
1: During the course of two-day foreign ministers' meeting, discussion took place around three broader themes: global and regional matters, reform of global governance and multilateral system, and BRICS at 20 under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. These three sessions allowed members to exchange views and share perspectives on main pillars of BRICS: strategic partnership, political and security, economic and financial, and cultural and people-to-people relations. The session on the theme BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, as well as the future direction of the grouping.
0: BRICS ke theme जो है उसमें कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, और उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरल सिस्टम. मल्टीलैटरलिज्म पे काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में बताइए.
2: देखिए, शुरू में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा. उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सबके लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा. तो ये माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए. और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो. वहाँ से हम शुरू करें और तब उस पर हम, वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाएं, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी. अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन, रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को, क्या बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज्यादा जरूरी है. जो हमारे संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें.
0: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सुधाकर दलेला. प्रेस स्टेटमेंट.
1: The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
0: ये भी मांग रही है कि यूएन के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
2: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए। वीटो सिस्टम जो

0: 5 कंट्रीज हैं और जो बाकी हैं उनके बीच में शक्ति का असंतुलन वहाँ सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए लेकिन इसमें कहाँ तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही है।
1: जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
0: देखिए मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है, इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए समाधान यही है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है।
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
0: देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जलडमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन,
1: ये सारे मैन मेड।
0: लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुरमुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहाँ के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहाँ से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहाँ पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है।
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। अब समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और चिन्मय की आवाज में। गीत को लिखा है इकबाल पटनी ने और संगीत है AR रहमान का। फिल्म का नाम है शिवाजी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म द ट्रेन से, केके की और क्षितिज जी तारे की आवाज में। गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत है मिथुन का। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म से ये खूबसूरत।

कार्यक्रम का अगला गीत शफक के रंग से, रेखा भारद्वाज की आवाज में। गीत को लिखा है इंदिरा वर्मा ने और संगीत है सुदीप बैनर्जी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। समय हो चला है एक अंतराल का, तो आइए लेते हैं ये।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही समय में दिल्ली से समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्यवाही का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में

0: की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ऑल द ब्रिक्स मेंबर्स एंड पार्टनर कंट्रीज।
6: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी

0: विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक

0: गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. Is vision mein antarrashtriya kanoon ka palan avashyak hai.

0: category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under 15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69 kg category snatch event by lifting 96 kg in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121 kg in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217 kg. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153 for 5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मौतल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक شدید गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ-साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज की अहमियत को उजागर किया है। अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: हुर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। दरअसल भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यागानगत का इरादा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर

0: दे छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनू मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसम विभाग महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिर कुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तई भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसी रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल जगत। आज इसमें हम सुनेंगे वार्ता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर। वार्ताकार होंगी डॉली।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, फ्रेंच ओपन विश्व के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है, जिसका आयोजन हर वर्ष फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्ले कोर्ट पर किया जाता है। क्ले कोर्ट पर गेंद की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और लंबी रैलियां देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहां खिलाड़ियों की फिटनेस, धैर्य और रणनीति की असली परीक्षा होती है। फ्रेंच ओपन में दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। पुरुष और महिला एकल के अलावा युगल और मिश्रित युगल मुकाबले भी आयोजित किए जाते हैं। फ्रेंच ओपन केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि खेल भावना, संघर्ष और उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों को हर वर्ष इस टूर्नामेंट का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर यह वार्ता। वार्ताकार है डॉली सक्सेना।

नमस्कार श्रोताओं, पेरिस की लाल बाजारी पर साल के सबसे बड़े मिट्टी के संग्राम यानी फ्रेंच ओपन 2026 का बिगुल बज चुका है। अब हम आपको ले चलेंगे रोला गेरो के उस ऐतिहासिक मैदान में, जहां 24 मई से 7 जून तक टेनिस की दुनिया के दिग्गज अपना पसीना बहाएंगे। आइए जानते हैं इस बार के टूर्नामेंट की मुख्य विशेषताएं, दावेदार और वो रोमांचक संभावनाएं जो इस आयोजन को खास बना सकती हैं। फ्रेंच ओपन दुनिया का एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो लाल मिट्टी पर खेला जाता है। यह सतह न केवल धीमी है बल्कि गेंद को भी अधिक उछाल देती है, जिससे खेल शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाला हो जाता है। यह अंक जीतने के लिए खिलाड़ियों को लंबी रैलियां लड़नी पड़ती हैं।

टेनिस की दुनिया की सबसे कठिन टेस्ट माना जाता है। इस साल पहली बार ग्रैंड स्लैम इतिहास में खिलाड़ियों को कनेक्टेड डिवाइस पहनने की अनुमति दी गई है, जिससे वह मैच के दौरान अपनी फिटनेस और बायोमेट्रिक डेटा को ट्रैक कर सकेंगे। इस समय जबकि टेनिस के दूसरे ग्रैंड स्लैम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग की ओर बढ़ चुके हैं, फ्रेंच ओपन ने इस साल भी मानवीय लाइन जजों पर अपना भरोसा कायम रखा है। इस बार पुरुष वर्ग का मुकाबला काफी भावनात्मक और अनिश्चित नजर आ रहा है। इसमें दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन कैलरोस एल्कराज कलाई की चोट के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। दूसरी तरफ नंबर वन जेरिक सिंगर अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस बार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनका मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा, जो हाल में ही मैड्रिड मास्टर में फाइनल तक पहुंचे थे, जबकि 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच भले ही उम्र के साथ थोड़े धीमे हो गए हों, लेकिन रोला गेरो में बड़े मंच पर उनको कम आंकना तो भूल होगी। पूर्व चैंपियन स्टैन वावरिका के लिए ये आखिरी फ्रेंच ओपन होगा। टूर्नामेंट के अंत में उन्हें विशेष विदाई दी जाएगी। महिला वर्ग में इस बार मुकाबला मिट्टी की रानी बनाम नई शक्ति के बीच है। इसमें पोलैंड की ईगा, जिन्हें पिछले 6 वर्ष में 4 बार से ये खिताब जीता है, एक बार फिर इस सतह पर अजय नजर आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ चुनौती वर्ल्ड नंबर वन अरीना सवालेंका और पिछले साल की चैंपियन कोको गॉफ ईगा के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हैं। युवा सनसनी मीरा एड्रिवा पर भी सबकी नजर रहेगी। फ्रेंच ओपन में इस साल कुल पुरस्कार की राशि में भी वृद्धि कर दी गई है, जो कुल 61.7 मिलियन यूरो तक पहुंच गई है। खास बात तो ये है कि शुरुआती राउंड में बाहर होने वाले खिलाड़ियों की राशि में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। पेरिस के कॉनकॉर्ड में इस बार विशाल स्क्रीन लगाई गई है, जहां हजारों प्रशंसक मुफ्त में इस मैच का आनंद ले सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेनिक सिंगर अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतकर टेनिस की पीढ़ी पर राज कर पाएंगी, या फिर जोकोविच का अनुभव एक बार फिर युवा जोश पर भारी पड़ जाएगा। महिला वर्ग में क्या ईगा स्वायतेक अपना 5वां खिताब जीतकर इतिहास रचेंगी? इन सभी सवालों के जवाब 7 जून को कोर्ट फिलिप पर मिलेंगे। टेनिस प्रेमियों के लिए आने वाले 15 दिन रोमांच, जुनून और लाल मिट्टी की धूल के बीच तपे महान संघर्ष के साक्षी बनेंगे। इसमें पूर्व चैंपियन स्टैन वावरिका के लिए ये आखिरी फ्रेंच ओपन होगा। टूर्नामेंट के अंत में उन्हें विशेष विदाई दी जाएगी। इसके महिला वर्ग में इस बार मुकाबला मिट्टी की रानी बनाम नई शक्ति के बीच है। पोलैंड की ईगा स्वियातेक, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में 4 बार ये खिताब जीता है, एक बार फिर इस सतह पर वह अजय नजर आ सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ चुनौतियां वर्ल्ड नंबर वन अरीना सवालेका और पिछले साल की चैंपियन कोको गॉल्फ ईगा के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हैं। युवा सनसनी मीरा एंड्रीवा पर भी सबकी नजर रहेगी। 1891 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट टेनिस के 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम में से एक है। इसे आधिकारिक तौर पर रोला गेरो कहा जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के एक साहसी फ्रांसीसी पायलट के नाम पर रखा गया है। अन्य ग्रैंड स्लैम जैसे विंबलडन और यूएस ओपन के मुकाबले में यह टूर्नामेंट सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मिट्टी की कोर्ट पर गेंद की गति धीमी हो जाती है और बाउंस ऊंचा होता है। अंग जीतने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि सटीक रणनीति और लंबी रैलियां खेलने का धैर्य की भी आवश्यकता होती है। राफेल नडाल, जिन्हें किंग ऑफ किले भी कहा जाता है, उनकी विरासत आज भी इस कोर्ट के कण कण में बसी है। भले ही चोटें या उम्र बाधा बने, लेकिन रोला गेरो पर उनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन सही लगता है। वहीं नोवाक जोकोविच की निरंतरता आज भी युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है। महिला सिंगल्स में ईगा स्वियातेक जैसी खिलाड़ी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। उनकी स्टाइलिंग तकनीक और कोर्ट कवरेज ने महिला टेनिस के स्तर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसकी बड़ी विशेषता लाल बजरी है। वास्तव में यह मिट्टी नहीं, बल्कि सफेद चूना पत्थर की परतों के ऊपर पिसी हुई ईंटों का पाउडर होता है। यहाँ खिलाड़ियों को दौड़ने के बजाय फिसलना करना पड़ता है। जो खिलाड़ी इस आर्ट में माहिर होते हैं, वही पेरिस में सफल हो पाते हैं। यह मैच अक्सर 4 से 5 घंटे तक चलते हैं। चिलचिलाती धूप और धीमी कोर्ट के कारण खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों और फेफड़ों की असली परीक्षा देते हैं।

वैसे भी मई के अंत और जून की शुरुआत में पेरिस का मौसम और रोलागेरो का माहौल जादुई होता है। कोर्ट फिलिप चैटियर और सुजैन लैंगलैन जैसे प्रतिष्ठित स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे रहते हैं। दुनिया भर के टेनिस प्रेमी टीवी पर व डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका रोमांच उठाते हैं। पेरिस की फैशन राजधानी होने के कारण खिलाड़ियों की परिधान भी यहां चर्चा का विषय रहते हैं। फ्रेंच ओपन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि खेल भावना का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि जीत केवल तेज सर्विस या ताकतवर शॉट से नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने से मिलती है। जैसे जैसे फाइनल की घड़ी करीब आती है, पूरी दुनिया की सांसें थम जाती है। चाहे कोई नया खिलाड़ी चैंपियन बने या कोई पुराना दिग्गज अपनी बादशाहत बरकरार रखे, फ्रेंच ओपन ये हर साल होने वाले चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में यह दूसरा है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद और विंबलडन और यूएस ओपन से पहले आयोजित होता है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, लेकिन 1925 तक ग्रैंड स्लैम स्तर का टूर्नामेंट नहीं बन पाया था। फ्रेंच ओपन विश्व का सबसे प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है। एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो वर्तमान में क्ले कोर्ट्स में खेला जाता है। 1975 तक फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा प्रमुख टूर्नामेंट था जो खास पर नहीं खेला जाता था। क्ले सतह की विशेषताओं के कारण, जो लंबी रैलियां और उच्च शारीरिक मांग को बढ़ावा देती हैं, और चैंपियनशिप के लिए पुरुष की 7 राउंड के सर्वश्रेष्ठ 5 सेटों की आवश्यकता के कारण फ्रेंच ओपन को टेनिस में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट माना जाता है। इन दिग्गज व युवा खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर। पेरिस के लाल बजरी पर होने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का 125वां संस्मरण पिछले वर्ष से काफी अलग और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कार्लोस अल्कराज के चोट के कारण हटने की खबर से टूर्नामेंट पर पूरा परिदृश्य बदल गया है, जिससे इस बार खिताब की नई जंग शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि इस बार किन किन खिलाड़ियों पर सबकी नजर टिकेगी। पुरुष वर्ग में इस बार यानिक सिनर सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने आए हैं। 2025 में अल्कराज के साथ ऐतिहासिक फाइनल खेलने वाले सिनर ने मोंटे कार्लो और मैड्रिड मास्टर जीतकर अपनी क्ले कोर्ट फॉर्म साबित कर दी। सिनर का लक्ष्य पहली बार रोलैंड गैरोस खिताब जीतकर अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करना होगा। इसके अलावा अलेक्जेंडर कले कोर्ट में बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। वे अपने पहले ग्रैंड स्लैम की तलाश की ओर हैं और इस बार पेरिस में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नोवाक जोकोविच, जो 24 ग्रैंड स्लैम विजेता और 3 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन जोकोविच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कैस्पर रूड लाल बजारी के स्पेशलिस्ट रूट, जो 2022 और 2023 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, इस बार फिर खिताबी रेस में बने हुए हैं। महिलाओं में ईगा का रिकॉर्ड अद्भुत है। वह इस साल अपना 5वां खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। इसके अलावा एरिना सबलिंका भी फोकस में है, जिन्होंने 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। वह फ्रेंच ओपन ट्रॉफी के लिए सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। 2025 की चैंपियन कोको गॉफ अपने किताब का बचाव करने के लिए तैयार है। उनकी गति और डिफेंस क्ले कोर्ट में बहुत काम आती हैं। क्या सिनर अपना पहला किताब जीतेंगी या सबलिंका के वर्चस्व को खत्म कर देंगी? पेरिस की लाल मिट्टी पर इन सवालों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद।

0: अभी आपने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थी डॉली सक्सेना। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।

0: ये खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर। तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। आज इसमें आपने सुनी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पर विशेष वार्ता, वार्ताकार थी डॉली सक्सेना।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में, फिल्म परदेश से। गीत को लिखा है हेमा सरदेसाई ने, क्षमा कीजिए, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है अनु।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमको दीवाना कर गए से, सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, सुना चाहा है आप सभी ने। घंटाघर चौक खंडवा से इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। पटेल नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजी जाजोरिया। बीड शहर महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। तो आइए सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर ये

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म झूठा कहीं का से किशोर

कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है आरडी बर्मन का। सुनना चाहा है आप सभी ने तिरोड़ी महाराष्ट्र से। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने और अर्जुन गवनेकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवीन वर्मा, रीता वर्मा और शुभम। नेपाल पैलेस सागर से इस गीत की फरमाइश की है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। तो आइए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म यकीन से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। सुनना चाहा है आप सभी ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरालीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, रजत वर्मा और शिवांगी वर्मा ने। सुपरमार्केट देवास से इसी गीत को सुनना चाहते हैं प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जयसवानी, बिल्लू लालवानी और नितिका लालवानी। गंगेड़ी जिला उज्जैन से इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान। तो आइए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरी जंग से लता मंगेशकर और सबीर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनना चाहा है आप सभी ने राजाराम नगर देवास से। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, निकेश अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल। रूपाखेड़ी देवास से इस गीत को सुनना चाहा है हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली, शोभना और शिवाय ने। जेल रोड देवास से इस गीत को सुनना चाहते हैं नवीन वर्मा, बबलू वर्मा, कालू भैया, लोकेंद्र वर्मा। तो आइए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है वापस। सुनना चाहा है आप सभी ने, शांतिनगर खरदौस कला जिला उज्जैन से इस गीत को सुनना चाहते हैं असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस, फलक अफसा और अयान दुलावत। कनेरा मोहल्ला पटियाला से इस गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से इस गीत के लिए फरमाइश करते हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, नीलम वर्मा और रागिनी मिस्त्री। तो आइए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन राग जयंत मल्हार में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितार वादन राग जयंत मल्हार में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही समय में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसका अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन्स को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री

0: शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the 6-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic, and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।